आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456551 या 9707-06-575।
9: श्रोतागण प्रणाम, सुप्रभात। इस सुबह सवेरे के बेला में हम लेके आ गए बनी राउर आपन कार्यक्रम, आपन दे आपन देखभाल। जिमे हमनी के जाने निशन अपना स्वास्थ्य के और बेहतर बनावे खातिर बहुत सारा हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। तो चलिए श्री गणेश कही जाओ आज के प्रोग्राम के। आज जान जाओ सबसे पहले सर्दी, बुखार और खांसी से निजात पावे की कुछ घरेलू नुस्खा। पीपल, अडूसा के पत्ता और पोस्त डोडा, ये सब के काढ़ा बना के पिए से खांसी, श्वास तथा कफ, ज्वर के इलाज होला। संभालू के पत्ता के क्वाथ और पीपल के चूर्ण मिला के पिए से कफ, ज्वर के नाश होला। दूध गर्म करके ओई में थोड़ा सा नमक और गुड़ डाल के बच्चा के पिलावे से जुकाम और कफ रोग मिटेला। नागरबेल के पत्ता पर एरंड के तेल लगा के और ओई के थोड़ा सा गर्म करके छोटा बच्चा के छाती पर रख के गर्म कपड़ा से हल्का सेक करे से बच्चा के छाती में जमा कफ पिघल के निकल जाला। हिंग के शराब में खरल करके सुखा ली और के दो रत्ती की मात्रा में लेके मक्खन के साथ खाए से खांसी, श्वास और दूषित कफ विकार ठीक हो जाला। गाजर रस या अर्क कफ सर्दी एवं मस्तिष्क दर्द में अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए दोस्त लोग अब जानल जाओ छोटा मोटा परेशानी खातिर 20 घरेलू नुस्खा। या कंकर खाए में आवे पर इसबगोल के भूसी गरम दूध के साथ 3 समय सेवन करी। घाव ना पाके एक हथरा गरम मलाई जितना गरम सहन कर सकी बांधी। तुतलापन दूर करे खातिर रात के सोते से 5 मिनट पूर्व 2 ग्राम भूनल फिटकरी मुंह में रखी। बच्चा के पेट दर्द होके पर अदरक के रस 5 ग्राम तुलसी पत्र घोट के आटा के बच्चा के 3 बार पिलाएं। सर्दी में बच्चा के सेहत खातिर तुलसी के 4 पत्ता पीस के 50 ग्राम पानी में मिलाएं आ सुबह पिलाएं। अमाशय के दर्द में तुलसी पत्र के चाय के तरह औट के सुबह शाम लेहल लाभदायक है। सीना में जलन होके तब पाव भर ठंडा जल में नींबू निचोड़ के सेवन करें। शराब ज्यादा पी लिहल होके तो 6 माशा फिटकरी के पानी या दूध में मिला के पिला देवे से या दूध सेब के रस पिला देवे से उनके नशा खत्म हो जाला। अरहर के पत्ता के रस पिलावे से अफीम के नशा कम हो जाला। आधा छटाक अरहर दाल पानी में उबाल के उनके पानी पिलावे से भांग के नशा कम हो जाला। केला हजम करे खातिर 2 छोटी इलायची काफी होला। आम ज्यादा खा लिहल होके ता हजम करे खातिर थोड़ा सा नमक के सेवन करी। मुंह से बदबू आवे पर मोटा अनार के छिलका पानी में उबाल के कुल्ला करी। मछली के कांटा यदि गला में फंस जाए तो केला खाएं। हिचकी आवे पर पुदीना के पत्ता या नींबू चूस ली। वजन घटावे खातिर गरम जल में शहद व नींबू मिला के सेवन करें। कान दांत दर्द खांसी व अपचन में जीरा व हींग 1 से आधा मात्रा में सेवन करें। जख्म पर पड़े वाला कीड़ा के नाश करे खातिर हींग पाउडर बुरक दी। गाढ़ दर्द खातिर हींग रुई के फाहा में लपेट के दर्द की जगह पर रखी। शीत ज्वर में ककड़ी खा के छाछ सेवन करी। शराब के बेहोशी में ककड़ी के सेवन कराई तो लाभ मिली। तो दोस्त लोग अब हम बतावे जात मानी ब्यूटी खातिर कुछ घरेलू नुस्खा। कई बार हम साधारण से बीमारी में घबरा जानी लेकिन अगर हमनी के थोड़ा भी घरेलू नुस्खा के बारे में पता होके तो आसानी से तुरंत इलाज कइल जा सकेला। ऐसे में दादी नानी के खजाना से हम लेके आयल बानी ऐसे ने कुछ लाजवाब सरल और सहज नुस्खा जे के अपना के रवा भी पा सकतनी निरोगी काया। त्वचा के कील मुहासा और दाग धब्बा के कैसे दूर रख सकतनी एकरा खातिर आसान से घरेलू उपाय 25 मिलीलीटर ग्लिसरीन और 25 मिलीलीटर शुद्ध गुलाब जल में 5 ग्राम सल्फर पाउडर मिलाएं। आई लेप के रात में चेहरा के दाग धब्बा मुहासा पर लगा के छोड़ दी। सवेरे पानी से चेहरा धोई। ई लेप से एक हफ्ता में रवा एकने के प्रॉब्लम से निजात पा सके। बेहतरीन रिजल्ट पावे खातिर सप्ताह में 3 बार एके लगाई। संतरा के 20 ग्राम सूखा छिलका, 5 ग्राम सूखल नीम के पत्ता ली और एके पीस के चूर्ण बना ली। ई चूर्ण में 5 ग्राम चूर्ण, चंदन चूर्ण और आटा मिलाई। ई मिश्रण में 5 मिलीलीटर बादाम तेल और इतना ही मात्रा में तिल के तेल मिलाई। अब ई उपटन के रात भर चेहरा पर लगाए रखी और सवेरे पानी से धो दी। ई उपटन के हफ्ता में 3 से 4 बार लगाई। गुलाब पत्ती, सेना, नीम, तुलसी और कासनी के 3 ग्राम पत्ती के उबाली। आ ई मिश्रण के छान के इमे चीनी मिलाई। आ ई मिश्रण के हर रात सूते से पहले पी त ऐसे रवा 15 दिन में ही फर्क दिखाई देवे लगी। तो दोस्तों चली आप जानल जाओ सौंदर्य के साथ ही शहतूत के घरेलू नुस्खा। एगो स्वादिष्ट मीठा नाजुक नरम फल है। एमे अनेक ऐसन लाभदायक गुण होला जौन कई बीमारी में वरदान साबित हो सकेला। शहतूत में पाए जाए वाला रिज्वर्टेरोल के बारे में मानल जाला कि ई शरीर में फैलल प्रदूषण के साफ करके संक्रमित चीज के बाहर निकालेला। अगर वह झुरी से परेशान बानी तो अब चिंता करे के कौन बात नहीं खे। एक खातिर शहतूत के जूस पी राउ चेहरा चमकदार और ताजा हो जाई। शहतूत में एंटी एज यानी उम्र के रोके वाला गुण होला। साथ ही ई त्वचा के जवानी की तरह जवा बना देवेला और झुरी के चेहरा से गायब कर देला। बाल में भी भूरापन लावेला काहे कि एमे 89% ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पावल जाला। शहतूत में रिज्वर्टेरोल पावल जाला जौन स्वास्थ्य के लाभ पहुंचावेला। इतना ही ना शहतूत में और भी कई गुण पावल जाला जैसे एके नियमित प्रयोग से आँख के गड़बड़ी, लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से बचल जा सकेला। दोस्त लोग आज खातिर बस इतना ही काहे कि अब दीपाली ली है रउआ से जाए के विदा। तो रखी रउआ आपन सेहत के ख्याल आजमाई ई सब नुस्खा के आ हमरा के दी जाए के इजाजत। नमस्कार।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
12: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
13: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
14: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
12: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
12: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
14: कॉल करें 87-894-18744।
15: ठक ठक
16: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
5: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है Fever FM Production।
16: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव बेईमानी से दूर रखना सिखाते हैं, शिव मेहनत करना सिखाते हैं। अब आगे
17: डॉक्टर साहब आपसे मिलने ठाकुर साहब आए हैं।
18: अच्छा, एक काम करो, उन्हें बिठाओ, पानी पिलाओ, चाय पूछो, बहुत खास लोग हैं, ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। अरे ठाकुर साहब प्रणाम।
19: प्रणाम बेटा, जीते रहो।
18: सब ठीक है ना? आपने यहाँ आने की परेशानी क्यों उठाई, मैं आ जाता ना घर पर।
19: अरे ना ना बेटा, परेशानी कैसी बेटा, वो अकेले में कुछ बात करनी है।
18: हाँ बताइए
19: बेटा, वो जरा अकेले में।
18: अच्छा जी जरूर भाई, जरा
17: मैं खाने का इंतजाम करता हूँ।
18: कहिए ठाकुर साहब।
19: बेटा तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे बड़े भैया वाली भाभी जी पेट से हैं।
18: हाँ हाँ, अभी वो छठा महीना चल रहा है ना उनका।
19: हाँ तो भाई, हमने तो कह दिया पहले से ही कि डिलीवरी तो हमारे विकास के अस्पताल में ही होगी।
18: हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने
19: बेटा, वो हम लोग तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहते थे।
18: हाँ बोलिए ना।
19: वो के कह रहे हैं उसे सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। हाँ वो बच्चा हो है, लड़का है या लड़की है, वो जानना था। तो मैंने सोची कि इतनी सी बात है तो दूर क्यों जाना, अपना विकास है, उसका अस्पताल है, वहीं पता लग जाएगा, है ना।
18: क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं।
19: बेटे देखो, घुमा फिरा के बात करनी तो हमें आती नहीं। बेटे विकास, तुम्हें भाभी के होने वाले बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करना है।
18: ये क्राइम है ठाकुर साहब, मैं ये नहीं कर सकता, डॉक्टर होकर ये पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, माफ कीजिए पर मुझसे ये नहीं हो पाएगा।
19: बेटे देखो, पाप पुण्य का तो मालूम नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो बड़े डॉक्टर साहब है ना पृथ्वी साहब, वो हमारे खास लगते हैं, हम उनके पास जाते हैं। फिर हमने सोचा तुम अपने हो, जब तुम्हारे पास पढ़ने को पैसे नहीं थे तब हम तुम्हारे साथ खड़े थे, आज जब तुम यहाँ पहुँच गए हो, अकड़ दिखा रहे हो, सही गलत का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे जरूरत के समय में हम तुम्हारे साथ थे, लेकिन आज जब हमें जरूरत पड़ेगी तो तुम इतना सा काम नहीं कर पा रहे। गणे एहसान फरामोश निकले भाई विकास बेटे तुम।
18: ठाकुर साहब रुक, ठाकुर साहब प्लीज रुकिए ठाकुर साहब।
20: हे भगवान, मैं कितना बेबस हूँ, मेरी मदद कीजिए।
21: डॉक्टर विकास आप ही हैं?
18: हाँ आई एम सॉरी, जी मैं ही हूँ।
21: अरे क्या हुआ आपको, आप रो रहे हैं? क्या हुआ डॉक्टर बताइए ना, आप मुझसे कह सकते हैं?
20: इतना बेबस, इतना मजबूर क्यों महसूस कर रहा हूँ मैं आज। डॉक्टर हूँ, लोग भगवान के बराबर समझते हैं मुझे, नई जिंदगी देना, किसी की जिंदगी बचाना, ये सब काम है मेरा, फिर क्यों मैं कैसे कोई पाप कर सकता हूँ, ये जानते हुए भी कि सामने वाला इंसान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से हूँ, पर मैं गलत चीज में उनका साथ नहीं देना चाहता, क्या करूँ मैं, पाप कर दूँ उनका एहसान उतारने के लिए या सही के साथ खड़ा रहूं।
21: देखिए मैं ये तो नहीं जानता कि आप किस परेशानी में हैं डॉक्टर, पर साथ तो हमेशा सही का ही देना चाहिए, चाहे सामने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, स्वयं भगवान ही क्यों ना हो।
18: अच्छा पर अगर मैं सच का साथ दूंगा तो क्या इस एहसान फरामोशी के लिए भगवान मुझे माफ कर देंगे?
21: बिल्कुल करेगा, शिव ने परशुराम को किया था, आपका ईश्वर आपको करेगा।
18: वो कैसे मतलब?
21: भूमंडल के सभी राज्यों को जीत जाने के कारण उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो चुका था, ऐसे में परशुराम ने पितरों को दिए अपने वचन को पूरा करने का सोचा।
22: कर्ण चरण कृतम वाक कायचम कर्मचम वा
2: श्रवण नयन चम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अपनी प्रतिज्ञा और वीरता का मान रखते हुए मैं इस अश्वमेध यज्ञ का आह्वान करता हूं और खून से भरे इन तालाबों से अपने पितरों को अपने शत्रुओं के रक्त का अर्घ्य समर्पित करता हूं।
6: पुत्र, हमें तुम पर और तुम्हारी वीरता पर अभिमान है। पुत्र,
7: तुमने साबित कर दिया कि तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो।
2: आज मेरे जीवन के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं।
6: पुत्र, तुम्हारी वीरता इस संसार में तुम्हारे जाने के बाद भी गूंजेगी, किंतु
2: किंतु किंतु क्या पिताश्री?
6: किंतु पुत्र, इतना क्रोध और हिंसा ठीक नहीं।
2: मैं समझ रहा हूँ पिताश्री, कहिए मैं क्या कर सकता हूँ?
6: प्रायश्चित करो, रक्तपात का प्रायश्चित।
2: वो कैसे?
6: सबसे पहले ये यज्ञ समाप्त करो,
7: फिर दान धर्म करो,
6: इसके बाद तीर्थ यात्रा का आगमन करो
7: और अंत में तप करो।
6: पुत्र, घोर तप करो और प्रायश्चित की ओर बढ़ो।
2: जी पिताश्री। ऋषि कश्यप, बताइए आप दक्षिणा में क्या चाहते हैं?
23: परशुराम जी, आपके पूर्वजों के समान मैं भी यही चाहता हूं कि आप युद्ध से दूर रहें। यही मेरी दक्षिणा होगी।
2: आप ये दक्षिणा क्यों चाहते हैं ऋषि?
23: मुझे भय है परशुराम जी, यदि आप फिर से युद्ध क्षेत्र में उतर गए तो आपके बचे कुचे क्षत्रप पुनः सक्रिय होंगे। एक बार फिर आप रक्तपात को सक्रिय हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप दक्षिणा में आपके द्वारा जीती हुई सारी धरती भेंट कर जाएं। सातों द्वीप वाली धरती तथा पितरों की अंतिम आज्ञा यानी तीर्थ क्षेत्र का आगमन करें।
2: ठीक है ऋषि, आज से मेरी संपूर्ण संपत्ति आपकी है, किंतु ऋषि मैंने अपना सब कुछ तो आपको दे दिया है, मैं शेष ब्राह्मणों को क्या दूंगा?
23: इसका समाधान है मेरे पास, यज्ञ के लिए जो सोने से बने वैदिक हैं, उन्हें कई भागों में तोड़कर उन ब्राह्मणों को दान दे दो, वही उनकी दक्षिणा होगी।
2: ठीक है ऋषि, जैसा आप ठीक समझे।
23: तुमने मुझे प्रसन्न किया परशुराम, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और अब यही नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और भेंट है, ये लो।
2: ये क्या है ऋषि?
23: ये भगवान विष्णु का एक अमोघ मंत्र है, आवश्यकता पड़ने पर ही इसका उपयोग करना। अब तुम जाओ, अपनी अधूरी तीर्थ यात्रा और भगवान शिव की आराधना प्रारंभ

0: परशुराम, आंखें खोलो परशुराम।
1: महादेव।
0: पुत्र, तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर मैं तुमसे मिलने आया हूं। कहो, क्या वर दे सकता हूं तुम्हें?
1: महादेव, मैंने सारा जीवन युद्ध क्षेत्र में निकाल दिया। मेरे पूर्वज चाहते हैं कि मैं ये सब त्याग कर प्रेम और शांति का जीवन अपनाऊं। वो चाहते हैं कि मैं जप, तप, दान, व्रत, उपवास के रास्ते, धर्म के मार्ग पर चलूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए।
0: अवश्य, किंतु तुम्हें वचन देना होगा कि इसके बदले में मैं जो तुमसे मांगूंगा तुम मुझे दोगे।
1: आप जैसा चाहेंगे मैं करूंगा महादेव, मैं वचन देता हूं।
0: ठीक है परशुराम, जिस ऋषि ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना है उसका सिर काट लाओ।
1: ये आप क्या कह रहे हैं महादेव?
0: तुमने वचन दिया है परशुराम, और मैंने तुम्हारी इच्छा अनुसार वरदान का वचन तुम्हें दिया है, इसी शर्त पर कि तुम मेरी बात मानोगे।
1: महादेव, ये मैं नहीं कर सकता। मैं निरपराध हत्या नहीं कर सकता।
0: यदि ऐसा है तो आओ मुझसे युद्ध करो और निर्णय तय करो।
1: ठीक है महादेव, मैं अपने वचन से पीछे हटता हूं, ये सही नहीं। आइए।
2: लीजिए प्रभु, आप ही द्वारा प्रदान किया गया फरसा आप ही पर उपयोग कर रहा हूं।
1: क्षमा कीजिए प्रभु।
0: क्षमा की आवश्यकता नहीं परशुराम, आओ मेरे पास आओ, मेरे हृदय से लग जाओ पुत्र। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था।
1: परीक्षा?
0: हाँ पुत्र, तुम निष्पाप हो। तुमने युद्ध क्षेत्र में जो भी रक्त बहाया है उसके लिए तुम उत्तरदायी नहीं, वो तुम्हारा योद्धा धर्म था। और रही बात मेरी परीक्षा की, इसमें तुम सफल हुए पुत्र। मैंने तुम्हें नीति के विरुद्ध कार्य करने के लिए कहा, ये जानते हुए कि मैंने तुम्हें ये कार्य दिया है तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े रहे। मुझे अभिमान है तुम पर पुत्र, अन्याय करने वाला चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, धर्मशील व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। ये उस

0: अबॉर्शन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो। अरे हम कसम खाते हैं इन सब की, मैं कैसे?
1: एग्जैक्टली, इसीलिए आप अपने पार्ट पर बिल्कुल सही है। आपको गिल्टी नहीं फील करना चाहिए, गिल्टी उन लोगों को फील करना चाहिए जो अब भी ऐसी प्रैक्टिसेस में भाग लेते हैं और सोसाइटी को शर्मिंदा करते हैं।
0: लेकिन ठाकुर साहब की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, पर उनकी इज्जत के चलते अपने प्रोफेशन से, अपने मॉरल प्रिंसिपल से धोखा नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर भी मुझे माफ कर देगा।
2: हेलो,
0: यस डॉक्टर पृथ्वी।
2: विकास, ठाकुर साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि तुमने उनकी मदद करने से मना कर दिया।
0: हाँ बिल्कुल कर दिया सर, सेक्स डिटर्मिनेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मेरे प्रिंसिपल्स मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं करते ऐसी किसी भी प्रैक्टिस को सपोर्ट करने में, फिर चाहे वो ठाकुर साहब ही क्यों ना हो, या फिर आप डॉक्टर पृथ्वी।
2: अरे विकास तुम,
1: अरे वाह डॉक्टर, आप तो डॉक्टर से सिंघम बन गए।
0: बहुत अच्छा लग रहा है आज ये करके। सो सॉरी, आप कौन है? आप पेशेंट है या मुझसे मिलने आए थे, मैं पूछना भूल गया।
1: नहीं नहीं, मैं नील हूँ, ट्रैवलर हूँ। आपको ऐसे ही परेशान बैठे देखा तो सोचा पूछ लूं, बांटने से दुख हल्का हो जाता है ना।
0: अरे आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा था?
1: अरे आपको कौन नहीं जानता डॉक्टर, वैसे अक्सर लोग मुझसे अपने दुखों की कंप्लेन करते हैं और मैं झटपट उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे देता हूँ।
0: अजीब आदमी हो यार, पर अच्छे हो।
1: थैंक यू, चलिए मैं चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी।
0: मुलाकात जरूर, पर कहाँ?
1: अमरनाथ, वहीं जा रहा हूं मैं, आप भी आइएगा। हर हर महादेव।
3: सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, ते खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अगर जिंदगी एक इमारत है तो उसूल उसकी नींव होती है। बिड़ो, हाँ बिड़ो, अगर तेरा उसूल कमजोर है तो तेरी जिंदगी का बिल्डिंग एकदम ताश के पत्तों के किले की तरह। आगे बोलू क्या बिड़ो? एक फूंक लगा बिड़ो, जिंदगी का बैंड बज गया। और जिनके उसूल पक्के होते हैं वो हर मुश्किल आसानी से पार करता है बिड़ो, हर बाजी जीत जाता है। तो बिड़ो अपने आदर्शों पर पक्का रहने का, क्योंकि शिव महाराज आदर्शों पर चलना सिखाते हैं, शिव जीने की असली राह दिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा
4: शिवा।
5: आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था फीवर FM प्रोडक्शन HD Smartcast।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ

0: श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
2: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
2: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
2: जानकारी है तो कॉल करें 6252 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 99393-65923।

0: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम का होगा आयोजन, तैयारी शुरू। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की गुणवत्ता की गई जांच। 4 प्रधानाध्यापकों को किया गया निलंबित। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज की गई प्रेस वार्ता और बाढ़ से पूर्व तैयारियों की गई समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंग के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 सितंबर को आयोजित होने वाले हिंदी दिवस के कार्यक्रम को लेकर आज बैठक की गई, जिसमें सभी आवश्यक तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने इस बैठक का नेतृत्व किया और इस बैठक में हिंदी दिवस को व्यापक और प्रभावी तरीके से मनाने और आम लोगों, विद्यार्थियों और सरकारी कर्मियों के बीच हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि हिंदी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जन संचार की महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी दिवस का उद्देश्य केवल एक दिन हिंदी का उत्सव मनाना नहीं, बल्कि दैनिक जीवन, शिक्षा एवं सरकारी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने हिंदी के प्रति विद्यार्थियों और युवाओं में रुचि विकसित करने और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया। इस दौरान बताया गया कि सभी विद्यालयों में हिंदी दिवस के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होगा। साथ ही जिले में सभी सरकारी कर्मियों को हिंदी दिवस के अवसर पर एक टिप्पणी लिखने का निर्देश दिया गया। इनमें से जिन कर्मियों की टिप्पणी सबसे बेहतर होगी, उसमें हिंदी की भाषा, लेखनी इत्यादि के आधार पर इसमें बेहतर टिप्पणी करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा और वाद विवाद प्रतियोगिता में भी जो छात्र बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अलग अलग मामलों में 4 प्रधानाध्यापकों को निलंबित किया है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि DLED प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण उपस्थिति में गड़बड़ी के आरोप में प्रधान शिक्षिका सना रियाज को निलंबित किया गया। प्रशिक्षण से जुड़े अभिलेखों और उपस्थिति में अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया और जांच में प्रशिक्षण अवधि में अनुपस्थिति के बावजूद उपस्थिति दर्ज कराने, बिना अनुमति विदेश यात्रा और गलत उपस्थिति के आधार पर वेतन लेने समेत कई गंभीर आरोप सामने आए। इस मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कुचायकोट प्रखंड संसाधन केंद्र निर्धारित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने इसकी जानकारी दी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की प्रगति और निर्माण गुणवत्ता की विशेष जांच की गई। इस दौरान अभियान चलाकर भवन निर्माण और स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन तथा ग्राम पंचायतों के द्वारा कराए जा रहे पंचायत सरकार भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बैरागी टोला, फुलवरिया, थावे, कुचायकोट इत्यादि क्षेत्रों में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की जांच की गई। इस दौरान भवन निर्माण की प्रगति, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य तथा निर्माण की अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। इधर बरौली के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरफरा बालक के प्रधानाध्यापक विनय किशोर मांझी को भी शिक्षा सेवक चयन में गड़बड़ी को लेकर निलंबित किया गया। ये भी यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी के आरोप में तत्काल प्रभाव से इन्हें भी निलंबित किया गया और जांच में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने के बाद पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई। डीओ ने कर्तव्यहीनता, लापरवाही और विभागीय नियमों की अवहेलना को लेकर यह कार्रवाई की है। साथ ही फर्जी उपस्थिति और एमडीएम में अनियमितता मिलने पर बैकुंठपुर के राजकीय मध्य विद्यालय साफियाबाद के प्रधानाध्यापक गयासुद्दीन साई को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। औचक निरीक्षण में 185 छात्रों की उपस्थिति दर्ज थी, जबकि मौके पर सिर्फ 100 छात्र मिले। एमडीएम व्यवस्था, पंजी संधारण और वित्तीय प्रबंधन में भी अनियमितता पाई गई। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर डीओ ने निलंबन के साथ ही विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दिया है। साथ ही बैकुंठपुर प्रखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय एक डेरवा के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार सिंह को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। औचक निरीक्षण में दर्ज उपस्थिति और वास्तविक छात्रों की संख्या में बड़ा अंतर मिला। एमडीएम के चावल में 350 किलो की कमी, पंजी में छेड़छाड़ और कैशबुक उपलब्ध नहीं कराने समेत कई अनियमितता सामने आई। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने के बाद डीओ ने निलंबन की कार्रवाई का आदेश दिया और विभागीय जांच का भी आदेश दिया गया है। 12 सितंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने प्रेस वार्ता की और आम जनता से भी निवेदन किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक वादों का निष्पादन करवाएं और राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। इस बार परिवहन विभाग और ट्रैफिक चालान का भी काफी बेहतर तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन किया जाएगा। ट्रैफिक चालान में 50% की छूट दी जाएगी। इसको लेकर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जो जानकारी दी उसके अनुसार
4: 12 तारीख को नेशनल लोक अदालत लग रहा है, इस बार क्या कुछ कहेंगे?
5: मैं अनुप कुमार उपाध्याय, सचिव जिला विधिक संघ विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज। आप मीडिया के माध्यम से गोपालगंज की जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस साल की यह तीसरी लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जा रही है। इस लोक अदालत में दो तरह के मामलों का निष्पादन किया जाता है। पहला होता है प्री लिटिगेशन और दूसरा होता है पोस्ट लिटिगेशन। प्री लिटिगेशन में वे मामले आते हैं जो न्यायालय में अभी पंजीकृत नहीं हुए हैं और पोस्ट लिटिगेशन में वे मामले आते हैं जो न्यायालय में पंजीकृत कर दिए गए हैं। प्री लिटिगेशन में जैसे बैंक से संबंधित मामले, महिला हेल्पलाइन से संबंधित मामले, ग्राम कचहरी से संबंधित मामले और ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले आते हैं। पोस्ट लिटिगेशन में कंपाउंडेबल नेचर के मामले आते हैं। कंपाउंडेबल नेचर जो है सीआरपीसी के धारा 320 में और बीएनएसएस के धारा 359 में बताए गए हैं। इस बार दो हेल्प डेस्क 5 सितंबर से ही आयोजित की जा रही हैं। एक हेल्प डेस्क जो है लोक अदालत के पास लगाया गया है और दूसरा हेल्प डेस्क नई कोर्ट बिल्डिंग में लिटिगेंट और एडवोकेट साइड जिधर से आते हैं और सीढ़ी के पास वहीं हेल्प डेस्क लगाया गया है। हेल्प डेस्क में जो है कोई भी व्यक्ति आएगा और अपने मामले को बताएगा, वहां पीएलबी बैठा रहेगा, वो मामले को नोट कर लेगा और उस कोर्ट से या मेरे पास आएगा और उस मामले को लोक अदालत में निष्पादित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले जो हैं, ट्रैफिक चालान के संबंध में भी डीटीओ ऑफिस में एक हेल्प डेस्क लगाया गया है और एक ट्रैफिक थाना में हेल्प डेस्क जो सोमवार से चालू हो जाएगा। यहाँ पे जो भी पीड़ित पक्षकार होंगे जिनका मामला 90 दिन से पुराना होगा वे लोग आएंगे और अगर उनके मामले में जुर्माना राशि 50% से कम होने वाला रहेगा तो कोशिश ये की जाएगी कि इसी दौरान उनका कागजी कार्रवाई पूरा कर लिया जाए और लोक अदालत के दिन उस मामले को निष्पादित कर दिया जाएगा। इस बार जो है प्री लिटिगेशन के संबंध में भी शनिवार से लिटिगेंट नई कोर्ट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे जिधर से लिटिगेंट और एडवोकेट आते हैं वहीं पे आयोजित की जा रही है। प्री सिटिंग में कुछ पीओ भी आएंगे, कुछ पीएलबी बैठे रहेंगे, वो मामले को वहां नोट किया जाएगा और उनका निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से करने की कोशिश की जाएगी। इस बार जो है प्री लिटिगेशन में 20,000 नोटिस जारी की गई है और संभावना है कि 1500 मामलों का निष्पादन किया जाएगा और कोर्ट केसेस में 4200 नोटिस जारी की गई है और जो 2000 मामले संबंधित है इसमें भी संभावना है कि 1000 मामलों का निष्पादन किया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने मामले के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो वो लोक अदालत में या संबंधित न्यायालय में आके लोक अदालत से पहले अपने मामले को वहां बता सकता है और उसको निष्पादित किया जाएगा।
3: संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू की हैं। इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी की गई जिसकी अध्यक्षता बिहार विधान परिषद की आपदा प्रबंधन पुनर्वास समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने की। बैठक में जिले में बाढ़ की स्थिति, प्रभावित क्षेत्रों, राहत बचाव कार्य, स्वास्थ्य सुविधाओं, तटबंधों की सुरक्षा तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में हथुआ के विधायक राम सेवक सिंह, बरौली के विधायक मंजीत सिंह, जिलाधिकारी समीर सौरभ, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि जिले के 14 अंचलों में से 6 अंचल बैकुंठपुर, सिधौलिया, बरौली, माझा, गोपालगंज और कुचायकोट जल जमाव और बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। गंडक नदी को जिले में बाढ़ का प्रमुख कारण बताया गया। गंडक नदी उत्तर प्रदेश सीमा से अहिरौली दान से प्रवेश कर बैकुंठपुर अंचल के मटियारी तक करीब 80 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में प्रभावित होती है। अधिकारियों ने बताया कि नेपाल की तराई में अत्यधिक वर्षा के कारण नदी में पानी बढ़ने और वाल्मीकि नगर बराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसको देखते हुए तटबंधों की निगरानी और संवेदनशील स्थलों पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। राहत और बचाव के लिए जरूरी संसाधनों को भी अलर्ट किया गया है और इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। बाढ़ प्रभावित अंचलों के लिए पर्याप्त पॉलिथीन शीट, ईसी बैग और अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही सारण तटबंध की 72 किलोमीटर लंबाई और छरकियों की करीब 85.84 किलोमीटर लंबाई की सतत निगरानी हो रही है। फ्रंट लाइन पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर श्रमिकों के द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। स्लुइस गेट की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सभी प्रखंडों में चिकित्सा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। शहर के प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव दयाल को आज असहाय और जरूरतमंद मरीजों के प्रति उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा और मानवीय संवेदनाओं के लिए छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय और शिक्षक सह पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ संयुक्त रूप से डॉक्टर संजीव दयाल को अंग वस्त्र और शिवाजी का मोमेंटो और पौधा भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर राजीव दयाल ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान वास्तव में उन मरीजों के आशीर्वाद का प्रतिफल है जो आर्थिक अभाव के कारण बेहतर इलाज कराने में असमर्थ होते हैं, जिन्हें मैं सेवा भाव से ठीक करने का प्रयास करता हूं। उन्होंने कहा कि समाज के जरूरतमंद असहाय मरीजों की सेवा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। गोपालगंज शहर के भीएम फील्ड के पास एक छात्र को अज्ञात बदमाशों ने चाकू गोद दिया। छात्र के गर्दन में छुरी लगी, युवक लहूलुहान होकर गिर गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इसका इलाज चल रहा है। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि घायल युवक माझा प्रखंड के भैंसही गांव का संतोष सिंह का पुत्र सागर सुजल सिंह बताया जा रहा है। यह भीएम फील्ड के पास ही किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता है और इसी बीच भीएम फील्ड के तरफ निकला था, तभी अज्ञात बदमाशों ने इस पर हमला कर दिया और चाकू से कोड़ कर इसको जख्मी कर दिया। फिलहाल घायल के बयान पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अंकिता होटल में हुई पुलिस की छापेमारी के बाद आज पुलिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया। इसको लेकर सदर SDPO 2 ने इस कार्रवाई के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया।
6: दिनांक 2/9/26 को समय करीब 11:35 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि यादवपुर मेन रोड स्थित एक होटल है, नाम है अंकिता, इसमें देह व्यापार का धंधा कराया जाता है। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में गोपालगंज नगर थाना के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम में महिला पुलिस पदाधिकारी और महिला कर्मी को भी शामिल किया गया और सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु पूरी टीम जब अंकिता होटल के पास गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष वहां पर जांच किया गया और कार्रवाई की गई तो कुछ लड़के लड़कियों को बरामद किया गया। कुछ लड़के लड़कियों को रूम से और कुछ लड़के लड़कियों को हॉल में भी पाया गया। वहां पर स्टाफ को खोजा गया तो मैनेजर देख के फरार हो गया। एक स्टाफ उपेंद्र यादव को पकड़ा गया तो उनसे पूछा गया तो बताया कि यह होटल कोई अवधेश सिंह का है जो सालेमपुर का विशंपरपुर के अंतर्गत रहता है, और मैनेजर के संबंध में पूछा गया तो बताया कि धनंजय सिंह करके लड़के लड़कियों को रूम से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद की गई है ना, और सभी को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी को थाना लाया गया और विरुद्ध संबद्ध कार्रवाई लड़के लड़कियों के विरुद्ध की जा रही है और होटल के मालिक और उनके मैनेजर और जो स्टाफ पकड़ाया है उन पर भी विधि संबद्ध कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और उन लोगों को पकड़ने हेतु अग्रिम कार्रवाई छापामारी चल रही है।
3: जिला प्रशासन के द्वारा आपदा से पूर्व तैयारी, जन जागरूकता और सुरक्षित समुदाय के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर माझा के माधव हाई स्कूल में NDRF की 9P टीम के द्वारा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान सुरक्षित रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। NDRF टीम के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को आपदा प्रबंधन से जुड़ी जानकारियां दी, विशेष रूप से प्राथमिक उपचार, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, रक्तस्राव को नियंत्रित करने, CPR, सर्पदंश की स्थिति में आवश्यक सावधानियां, आंधी तूफान और वज्रपात से बचाव तथा बाढ़ के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा नियमों को लेकर विशेष रूप से बच्चों को जानकारी दी गई। सरकार के निर्देशानुसार आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन गंभीर है। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में DM ग्रीवांश सेल की महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें उप विकास आयुक्त, तो अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूअर्जन पदाधिकारी सहित तमाम संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने आम जनों से प्राप्त शिकायतों, आवेदनों तथा उनके निष्पादन की स्थिति में विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों की जल्द से जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और लापरवाह कर्मियों को फटकार लगाई गई। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निष्पादन सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, ऐसे में इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हिंदी दिवस पर कई कार्यक्रम का होगा आयोजन, तैयारी शुरू। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की गुणवत्ता की गई जांच। 4 प्रधानाध्यापकों को किया गया निलंबित। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज की गई प्रेस वार्ता और बाढ़ से पूर्व तैयारियों की गई समीक्षा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में। क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6-575।
13: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
14: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
14: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
15: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
16: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
17: आज मैं आपको एक ऐसे किरदार की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो राइटर ऑथर गीतांजलि कृष्णा की जानी मानी किताब की किरदार है, मीनल। उस शाम तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक मीठी सी आवाज, किसी 45 से 50 साल की फेमस महिला की, ये आवाज है वेल नोन राइटर ऑथर मिस गीतांजलि कृष्णा की। उन्होंने कहा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जर्रा नवाजी बख्शी। दिल जब बहुत खुश होता है तो लोग आंखों में पानी की तलाश करते हैं, जैसे कि अभी आप में से कुछ मेरी खुशी में तलाश करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो श्रेष्ठ लेखिका का पुरस्कार मुझे मिल रहा है ना, दरअसल ये उस लिबास को मिल रहा है जो मेरे शरीर ने पहन रखा है, कलम की शक्ल में। आपने मेरी किताब एक रंग इश्क को काफी पसंद किया, उसके किरदार मीनल को लेकर काफी सवाल और खत भी भेजे। अच्छा लगता है जब ख्यालों की दुनिया से पन्नों पर उभरी कोई बात जहन को यूं छू जाती है। जैसे कि शर्मा जी ने अभी रिक्वेस्ट के रूप में आदेश दिया है कि एक रंग इश्क को जरूर पढ़ा जाए, तो उनकी इस बात को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। पर इससे पहले कि मैं आपको उन पन्नों में मीनल के दर्द को, उसके प्यार को, उसके अल्हड़पन को कुरेदूं और आप तक पहुंचाऊं, एक बात साफ कहना चाहूंगी कि ये कोई कवि सम्मेलन नहीं है जहां मुझे आपकी किसी वाहवाह की जरूरत होगी। और फिर मिस गीतांजलि ने मीनल की कहानी को पढ़ा, मैं भी वहीं उसी हॉल में बैठी थी, उनकी कहानी में, उनके अंदाज में खोई हुई। आपको भी सुनाती हूँ मीनल की कहानी एक रंग इश्क का। राजनगर के एक छोटे से कस्बे में एक अल्हड़ मज जवानी में सराबोर घुमा करती एक बिजली का नाम था मीनल। उसकी अपनी एक निराली अदा थी, एक अलग अंदाज था किसी से बात करने का, किसी के साथ रहने का। कोई इतना भी खुश और शरारती हर वक्त कैसे रह सकता है? शायद इसकी खास वजह थी कि मीनल ने कभी भी अपने अंदर की बच्ची को मरने ही नहीं दिया। वो भी तितलियों की तलाश में बगीचों में घूमा करती थी, अभी भी चाट कचौरी के चटकारे लेने रामदीन के ठेले पर पहुंच जाती थी, अभी भी छोटे बच्चों के साथ कंचे खेला करती थी। पर इन सब खास अंदाज के बीच उसकी एक अनोखी आदत भी थी, उसका प्यार। नहीं, किसी नौजवान से इश्क की बात नहीं थी, उसका खास प्यार एक रंग को लेकर था, सुर्ख लाल रंग। ना जाने क्या खास था इस लाल रंग में कि मीनल इसकी दीवानी थी। लाल रंग की चूड़ियां, लाल रंग की कई तरह की चप्पलें, लाल रंग का वो खास रुमाल, लाल रंग की कई सारे कपड़े, लाल रंग से रंगी उसकी सारी दुनिया। और हाँ, उसकी अजीज एक लाल रंग की डायरी भी थी, जिसमें वो जिंदगी के तजुर्बे को, जिंदगी की महक को नज्म की, कविता की शक्ल दिया करती थी। कहने का मतलब ये है कि दिन भर के तमाम किस्सों में से किसी खास को वो कविता की शक्ल देती थी और उसे अपने करीब अपनी लाल डायरी में लिख लेती थी। यूं तो उसे पसंद नहीं था कि उसकी वो लाल डायरी को कोई छुए या फिर पढ़े, लेकिन अमिया जो उसकी खास दोस्त थी, उसे कभी कभी कुछ कुछ वो पढ़ा दिया करती थी, पर उसे भी वो लाल डायरी छूने की इजाजत नहीं थी। हाँ, वो मीनल के मन करने पर उसे मीनल की ही आवाज में सुन सकती थी। मीनल की डायरी से पढ़ा गया एक पन्ना कुछ यूं कहता था, आरजू तमाम कैद है किसी तितली की तरह, आरजू तमाम कैद है किसी तितली की तरह, फूल तो बदलते हैं, बागीचा नहीं बदलता, शिकायत नहीं बस ख्याले तन्हाई है, यूं शोर करने से निजाम नहीं बदलता। मीनल अब 18 साल की हो चुकी थी। पिताजी को काफी बार मनाने के बाद वो मुंबई आने वाली थी। खुद भी डरी हुई थी, एक अनजान शहर में कैसे वो खुद को संभाले और संवारेगी, लेकिन भविष्य के चमकते सपनों में मीनल की आंखें खुश थी। वैसे इतने डरने की बात नहीं है, मीनल ने खुद से कहा, ये अमिया भी तो साथ चल रही है, बहुत से लोग मुंबई जाते हैं, सपने पूरे करते हैं, और फिर हमारे पास तो कॉलेज हॉस्टल भी है, डिपार्टमेंट से आना है, हॉस्टल में रहना है, कोई फजीहत ही नहीं। बस इन्हीं ख्यालों के साथ मीनल पहुंच गई सपनों के बनते बिगड़ते शहर मुंबई।
18: सुनिए सुनिए सुनिए,
19: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
18: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
19: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
18: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
20: ठक ठक।
21: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा, मिला ही नहीं
21: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
18: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
21: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
18: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
23: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
24: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
25: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
24: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
25: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
24: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास,

0: खाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
3: मुंबई की भीड़ भाड़ और शोर शराबा किसी भी तरीके से मीनल को अपना नहीं रहे थे। कहां राजनगर की छोटी गलियों में बड़े बड़े से दिल रखने वाले मोहल्ले के लोग, और कहां यहां मुंबई में बड़े बड़े इमारतों में रहने वाली अनजान शक्लें। ये सब मीनल के लिए नया था। जिन कपड़ों को उसके मोहल्ले के लोग वाहियात मानते थे, वो यहाँ पर हाई क्लास लगने का जरिया है। लोग एक दूसरे से बात नहीं करना प्रिवेसी समझते थे। इन्हीं सब उधेड़ बुन में कुछ खिचखिची सी थी मीनल। खैर, रात भर इस शहर के बारे में सोचने के बाद कुछ ख्याल उसने अपने कॉलेज और डिपार्टमेंट का भी किया। कल उसके सपनों की उड़ान का पहला दिन है। सुबह उठ के मीनल तैयार हुई, अमिया साथ में ही थी, और फिर दोनों हॉस्टल के कमरे से निकल के चल दी डिपार्टमेंट की तरफ। मीनल ने अपनी पसंद की लाल कुर्ती और लाल सैंडल पहनी थी, और अमिया को भी उसने लाल कपड़े ही पहनवाए जबरदस्ती। उसका मानना था कि पहले दिन लाल का शुभ होता है, कुछ अच्छा ही होगा। जैसे जैसे वो आगे चल रही थी, कुछ लड़के लड़कियां आपस में ज्यादा ही गुले मिले लगे। अमिया के तो होश उड़े ही, मीनल ने भी भवे चढ़ाकर हंस के अपनी हैरानी जताई। ये सब मीनल के साथ नया था। जहाँ पे लोग इस तरह से पेश आ रहे थे, पर वहाँ लोग अपने ख्याल और अपने कपड़ों से आजाद थे, और मीनल अपनी खुशी में। मीनल ने सोच लिया था कि यहाँ सबसे अच्छे से दोस्ती करेगी, सबको इज्जत देगी, और सबका ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। उसने अपनी पसंद का आर्ट्स ले रखा था, तो बाकी भी आर्ट्स के सेक्शन उसके लिए खास ही थे। मीनल को पेंटिंग्स का बहुत शौक था, पर उसे वो बनाना नहीं आता था। हाँ, वो शब्दों से अच्छे से खेल जाती थी, और उन्हीं रचनाओं को वो अपनी तस्वीर समझती थी, पर अक्सर वो होता नहीं है जो आप सोच के चलते हो। ये मुंबई थी मेरी जान, जो बसने सबको देती है, पर अपनाती बहुत कम को है। कॉलेज में मीनल की सादगी भरे कपड़ों को कुछ लोग उसका देहातीपन समझते थे, कुछ को तो वो अपने बराबर ही नहीं लगती थी। उससे गरीबी और गवारपन की बदबू आती थी उन्हें। मीनल ने तो सबको अपना समझा था, पर पहले दो तीन तानों के बाद वो भी समझ गई थी कि जिंदगी वैसी नहीं जैसी आप चाहते हो। खैर, इसी उधेड़बुन के बीच अमिया तेजी से मीनल के पास पहुंची और उसे बताया, ऊपर वाले फ्लोर पे आर्ट सेक्शन वालों की पेंटिंग्स लगी हुई हैं, चल देखते हैं। मीनल को भी आइडिया बेहतर लगा, और वो भी ऊपर चल दी। वहाँ ढेर सारी अलग अलग ख्यालों की पेंटिंग्स, कुछ तो ऐसी थी जैसे चित्रकार ने हकीकत को पेपर पे उतार ही दिया हो। मीनल को सब बहुत खूबसूरत लग रहा था, तभी उसकी नजर कोने में रखी एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें ढेर सारे लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था। उस तस्वीर में एक बागीचा था जिसमें तरह तरह के फूल बने थे, और साथ ही टाइटल लाल रंग से सनी हुई तितली। पर इस चित्रकार ने गजब का काम किया था, इसने बागीचे के कोने से एक जंजीर निकाल के उड़ती तितली की पैर में बांध रखी। मीनल को यकायक अपनी रचना की वो पंक्तियाँ याद आ गई जो उसने तितली पर लिखी थी। वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये कौन है जिसके ख्याल इस तरह से उससे मिलते हैं। कुछ सोचती हुई वो हल्की सी पीछे होकर अपनी डायरी निकालने को ही हुई कि उसकी टक्कर एक इंसान से हो, जो ठीक उसी के पीछे खड़ा था, उसकी इस खुशी को देख रहा था। और उसने मीनल से तबाक से पूछा, क्या सच में आपको ये तस्वीर पसंद आई? मीनल ने कहा, जी हाँ, ये बड़ी बेहतरीन और दिलचस्प तस्वीर है। ये कहते हुए मीनल पीछे पलटी, और उसकी नजर एक खूबसूरत मर्द पर पड़ी।
2: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
3: वो डेविड था, जो इस कॉलेज का एक टीचर है और साथ में पेंटिंग्स का शौक भी रखता है। मीनल की नजर डेविड से हट ही नहीं रही थी। फिर उसने सॉरी कहकर हटकर पूरी तरह से डेविड को देखा। लाल कुर्ता और जीन्स के साथ खड़ा था डेविड, आंखों पर हल्का सा चश्मा, नजर वाला था शायद। वो चश्मा क्या खूब लग रहा था, उसका फ्रेम भी लाल ही था। मीनल ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी धड़कन को इतनी तेज होते महसूस किया था। मीनल ने खुद को संभाला, अपने बाल ठीक किए, और नीचे आ गई। उस दिन हॉस्टल के रूम पर आकर मीनल उस टक्कर को याद करके खुश होती रही। पूरे दिन ने उसे परेशान रखा था, पर दोपहर की उस टक्कर ने एक अलग ही सुकून दिया था मीनल को। फिर उसने निकाली अपनी वो खास लाल डायरी और उस पर लिखा,

0: ये जमीन जिस पे गिरी ना थी दो बूंद शबनम की, ये जमीन जिस पे गिरी ना थी दो बूंद शबनम की, ना जाने किस बर्क ने मिट्टी भिगा दिया। और भी तो तराने थे जिन्हें था गुनगुनाना, एक नज़्म ने हमारी हस्ती बना दी। क्या ये किसी नई कहानी की शुरुआत थी या कुछ और? मीनल के इस भंवर की बात तब जब आप सुनेंगे इश्क का अगला रंग।
1: एक रंग इश्क का, एक रंग इश्क का।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSP-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update रहे, आगे रहे. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को follow करें.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प.
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है. श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा. उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है. कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे. भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है. विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था. विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है. विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की. मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं. शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया. अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है. F-404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है.
5: अपडेट रहे, आगे रहे. एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें.
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है.

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की AI जेनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। AI को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने AI सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
9: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।

0: फिर कभी मेरे प्यार पर शक मत करना।
1: फिर तुमने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन शक नहीं।
0: अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं पागल हो जाऊंगा।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
7: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की गंगा, पुनपुन, गंडक, कोसी समेत 10 नदियां उफान पर। निचले इलाकों में फैला पानी, बाढ़ की स्थिति गंभीर। विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल होंगे। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से 31 दिसंबर तक ऑफलाइन निबंधन को ऑनलाइन कराने की अपील की। इसके बाद ऑफलाइन निबंधन हो जाएगा अमान्य। और पूरे प्रदेश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत 10 नदियां उफान पर हैं। इससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और निचले इलाकों में तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी फैलने के कारण ग्रामीण इलाकों में आवागमन बाधित हुआ है। बाढ़ से घिरे लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। नालंदा जिले के स्थावा और पटना जिले के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब गई है। वहीं बेगूसराय जिले में 2 रिंग बांधों में रिसाव की खबर है। पटना नदी पटना से भागलपुर तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी पटना के गांधी घाट में 1.67 मीटर तथा हाथीदह में 1.32 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वही पुनपुन श्रीपालपुर में 2.29 मीटर ऊपर बनी हुई है। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं जिला प्रशासन ने गंगा नदी में बने पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद करने के निर्देश दिए हैं। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी है। जिले के राघोपुर में 12 घंटे में 30 सेंटीमीटर, इस्माइलपुर बिंद टोली में 13 सेंटीमीटर और मदरौनी में 6 सेंटीमीटर वृद्धि हुई है। वहीं मुंगेर जिले में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। दूसरी तरफ नालंदा जिले में सोईवा और लोकायन नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि से नदी किनारे बसे गांव में चिंता बढ़ गई है। बिंद प्रखंड की उतरथु पंचायत सरकार भवन के समीप सोईवा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण तटबंध में कटाव शुरू हो गया है। जहानाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं।
1: जिले के नदियों, बैराज और पुल पुलियों की स्थिति पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार उदेरा स्थान बैराज पर वर्तमान में जल स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति बनी हुई है। जिले के जाफरगंज, सकुराबाद और साई मंदिर स्थित 3 लो लेवल पुल पुलियों के ऊपर से पानी का प्रवाह बना हुआ है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीनों स्थलों पर बैरिकेडिंग के साथ साथ पुलिस बल और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जहानाबाद से आभास रंजन।
0: वैशाली जिले में गंगा और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन द्वारा लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है। सारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है।
2: जिला प्रशासन के निर्देश पर सोनपुर, छपरा सदर, दिगवारा, रेविलगंज और गरखा के प्रभावित एवं संभावित क्षेत्रों का अधिकारियों ने निरीक्षण कर राहत बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। प्रभावित इलाकों में करीब 56 नावों का परिचालन किया जा रहा है, जबकि पोलोथीन शीट, लाइफ जैकेट और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की 8 मेडिकल टीम बाढ़ प्रभावित गांव में लगातार पहुंच रही है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी और जरूरत पड़ने पर त्वरित राहत एवं सुरक्षा निकासी के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सारण से पवन कुमार सिंह।
0: इधर नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने पटना, नालंदा, भोजपुर, वैशाली, सारण, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने नदियों में स्नान, तैराकी, सेल्फी और नौकायन पर रोक लगा दी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तटबंधों का भी जायजा लिया। श्री चौधरी ने बताया कि झारखंड में हुई भारी बारिश के चलते पुनपुन और दरधा नदी के जलस्तर में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग के अभियंता स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
3: झारखंड में भी अत्यधिक वर्षा होने के कारण पुनपुन और दरधा नदी में भी जल प्रवाह काफी आ गया है और वहां तो तटबंध को ओवरटॉप कर गया है। एक जगह जो स्थानीय लोगों ने तटबंध बनाया था उसमें टूटान ब्रिज भी हुआ था, लेकिन हमारे अधिकारियों ने उसको बंद कर दिया है। इसलिए स्थिति तो गंभीर है लेकिन अभी नियंत्रण में।
0: वही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रदेश में मॉनसून के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, बांका, भोजपुर और पटना जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक 98.6 मिलीमीटर बारिश पूर्णिया के भवानीपुर में दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सीवान जिले में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
4: दिनांक 4 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज एवं सिवान जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त सदस्यीय समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद संजय जसवाल समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति विधेयक के प्रावधानों और प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करेगी। एक रिपोर्ट।
5: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरी मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AINNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। राजधानी पटना स्थित इस्कॉन मंदिर समेत विभिन्न कृष्ण मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। रात्रि 12 बजे मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर में राधा कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। अनेक जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति और परंपरा में पर्व त्योहारों की लंबी श्रृंखला है जो हमारे सांस्कृतिक विरासत और विविधता में एकता का प्रतीक है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। श्री नवीन पटना में आयोजित श्री कृष्ण महोत्सव समेत अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। परिवहन विभाग ने कहा है कि 31 दिसंबर के बाद वाहनों का ऑफलाइन निबंधन अमान्य हो जाएगा। इसी आलोक में विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों से इससे पहले ऑनलाइन निबंधन कराने की अपील की है। राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होगा। वाहन मालिक निबंधन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से दस्तावेजों के सत्यापन में पारदर्शिता बढ़ेगी और डिजिटल रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी। प्रदेश में मृत रैतों की जमाबंदी को उनके उत्तराधिकारी के नाम स्थानांतरित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी राजस्व कर्मचारियों को मृत रैतों की जमाबंदी को उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पटना में विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि सभी राजस्व कर्मचारी अपने अपने हलका में हर महीने कम से कम 5 मृत जमाबंदी का निष्पादन करें। श्री सिंह ने कहा कि राजस्व अभिलेखों को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय रेल नेटवर्क पर यात्रियों की निगरानी और जांच के लिए जयनगर रेलवे स्टेशन पर इमिग्रेशन पोस्ट बनाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की अध्यक्षता में रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इमिग्रेशन पोस्ट का निर्माण इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नेतृत्व में होगा। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन पोस्ट के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण प्रारूप को और अधिक सरल तथा प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने पटना में विभागीय बैठक में कहा कि प्रशिक्षण प्रारूप में नई गतिविधियों को शामिल करने, ग्राफिक्स के माध्यम से विकास योजनाओं को समझाने की प्रक्रिया और प्रशिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने के उपाय किए जाएंगे। श्री प्रकाश ने कहा कि पंचायतों के विकास योजनाओं की डिजिटल निगरानी की व्यवस्था विकसित की जा रही है। नशा मुक्त भारत अभियान की 6वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस माह राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतिज्ञा का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. संदीप रेवजी राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रव्यापी प्रतिज्ञा में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अभियान नशाखोरी के पीड़ितों तक पहुंचने के लिए स्वयं सेवा करने की एक पहल है। सहरसा जिले के पॉक्सो अदालत ने एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में राजकुमार शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 70,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने बाढ़ की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बिहार में 10 नदियों की बाढ़ से बिगड़े हालात। दैनिक जागरण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के हवाले से लिखता है, BCI के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने के अधिकार नहीं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बक्सर में नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म, 2 शिक्षक निलंबित, 3 होटलों में छापेमारी, हेडमास्टर गिरफ्तार। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, कर्मभूमि में आगे बढ़े, जन्मभूमि का विकास करें। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, महिलाओं के लिए रोजगार सृजन से परिवार होगा मजबूत। आज अखबार लिखता है, पटना गया और भागलपुर समेत कई शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेश की गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत 10 नदियां उफान पर, निचले इलाकों में फैला बाढ़ की पानी, स्थिति गंभीर। विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल होंगे। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से 31 दिसंबर तक ऑफलाइन निबंधन को ऑनलाइन कराने की अपील की, इसके बाद ऑफलाइन निबंधन हो जाएगा अमान्य। और पूरे प्रदेश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करें 62052-61112 पे।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034648652 पे।

0: Pipu. Pipu. Pipu. Pipu.
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जा

0: एक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7।

0: 9162154619।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात

0: रही हो ना BSNL, Jio, Airtel, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: राधा, ओ राधा।
8: क्या है? मैं नहीं बोलती।
7: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
8: जा, मैं नहीं सुनती।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170-8565-87।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: राधा, ओ राधा।
5: क्या है, मैं नहीं बोलती।
4: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो।
5: जा, मैं नहीं सुनती।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री। कमलश्री कमलश्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमलश्री कमलश्री कमलश्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ऑनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमर जेड पर।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: Pipu. Pipu. Pipu. Pipu.
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: लंदन की लड़की नाना, अमरीकन गोरी नाना, लंकन की छोरी नाना, पारस की पोरी नाना, इंडिया, आहा, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट।

0: यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा।
1: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।
0: ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

सुनील गावस्कर वावा, कपिल द सिक्सर वावा, लता मंगेशकर वावा, जाकिर का तबला वावा, भारतनाट्यम वावा, यहाँ का भांगड़ा वावा, यहाँ की लावणी वावा, यहाँ का डांडिया वावा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: Raja Shivaji Baba, Akbar Basha Baba, Mahatma Gandhi Baba, Chacha Nehru Baba, Baba Ambedkar Baba, Mother Teresa Baba.
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: Taj Mahal Baba, Char Minar Baba, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूर

0: in India. Come on, come on, welcome to India.
1: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
2: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशिता हमारा,
2: हमारा यो।
1: East or West,
2: yo!
1: India is the best,
2: yo!
1: East or West,
2: yo!
1: India is the best,
2: yo!
1: East or West,
2: yo!
1: India is the best,
2: yo!
0: Come on, let me hear you say,
2: I-N-D-I-A.
0: Come on, everybody say,
2: I-N-D-I-A.
0: India, we love you, India, for me.

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।

0: आर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहाँ आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पे आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी के लिए यहाँ पे मैं एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूँगी और लगान मूवी से गाना है और गाने की बोल है राधा कैसे न जले। तो चलिए, जब तक हमारे लिसनर हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी के लिए गाना प्ले करती हूँ। तो एंजॉय कीजिए इस गाने को सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

अभी हम लोग सुन रहे थे लगान मूवी से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग राधा कैसे न जले, और आप सभी भी बताइए गाना कैसा लगा। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे लिसनर जुड़ चुके हैं, जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, वाह सुपर, बहुत ही सुंदर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और अपना नाम ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले और कौन है आप और कहां से। और मैसेज करने वाले हैं मनीष पासवान, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते भारती जी, मैं राम कुमार राम दरभंगा ज़िला का रहने वाला हूँ, और मुझे भी ये गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी गाना सुनाया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली सारिया वार्ड नंबर 1 से, गुड आफ्टरनून सभी को बोल दीजिएगा मैम, और हमारे तरफ से सभी दोस्तों को जुम्मा मुबारक बोल दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और सभी को बोल दिए हैं आपकी तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय भारती नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, और जन्माष्टमी की सारे रिमझिम सुनने वाले को शुभकामनाएं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय भारती दी, गुड आफ्टरनून का हालबा, मैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से, जुड़ गया हूँ, मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि माखन का कटोरा मिश्री की थाल, मिट्टी की खुशबू बारिश की फुहार, राधा की उम्मीदें कृष्णा का प्यार, मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का त्यौहार। और बसंत कुमार ठाकुर सरोज भाई ठाकुर ईश्वर राज पप्पू ठाकुर न्यायपारा विरई जिला बालो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को, और आप सभी को भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, आज मेरा बेटी का हैप्पी बर्थडे है मैम, नेम है आराध्या यादव, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी बच्ची को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ पूरे रेडियो परिवार की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं अनूप कुमार बेलसुई से, और हम के गाना सुने के बाद, और कृष्ण जी का कोई भी गाना बजा दें मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और कान्हा जी का गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए आपके लिए मूवी का एक सॉन्ग बजाती हूँ, और गाने की बोल है चांदी की डाल पर सोने का मोर। तो गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6550।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त RJ भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, नमस्ते, हम जुड़ गए हैं सिद्धार्थ पासवान बरौली गोपालगंज से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारती जी, और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय मैडम जी, नमस्कार मैडम जी, गुड आफ्टरनून मैडम जी, मैं प्रीति राय दास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से हूँ। और हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऑल लिसनर और RJ को, डेडिकेट सर को भी, डायरेक्टर सर को भी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आज आपके शो से 12 दिन बाद जुड़ रही हूँ और मुझे भी सॉन्ग सुनना है और गाने की बोल पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जय श्री कृष्ण राधे राधे भारती जी, और श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से आप रात और दिन दुगना तरक्की करते रहिए, और श्री कृष्ण जी का आपके आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे और आप खूब आगे बढ़े भारती जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए आपका भी, और सुनील यादव दुबई से जुड़े हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम जी, गुड मॉर्निंग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और अपना नाम ज़रूर बताएं आप कौन हैं और कहाँ से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो गुड आफ्टरनून मैडम जी, और मेरा नाम दीपक है, जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है साध मास्टर जी की तरफ से, लिख रहे हैं भारती जी, दो बजे फिर मिलते हैं। तो ओके बाय बाय, फिर मिलिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि राम कुमार राम दरभंगा जिला से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है, मेहंदी लगाऊं किस नाम की, राधा तो बनी है बस श्याम की, और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए गाना प्ले करते हैं, और मूवी नेम है हमको तुमसे प्यार है। तो गाना प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग मेहंदी लगाऊं किस नाम की, राधा तो बनी है बस श्याम की, और मूवी नेम है हमको तुमसे प्यार है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव दुबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि लिंक सेंड कर दिया हूँ और गाना प्ले कर दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी, और हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं हंसी आपकी कोई चुरा ना पाए, आपको कभी कोई रुला ना पाए, खुशियों का दीप ऐसे जले ज़िंदगी में कि कोई तूफान भी उसे बुझा ना पाए, भारती जी राधे राधे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश कुमार।

0: और गाना किसी को सुनवाना है?
1: हाँ, हमारा एक दोस्त है और काफी लगभग 10 महीने के बाद जुड़े हुए हैं।
0: जी जी तो गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: कहाँ से बोल रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा।
0: जी बता दीजिए।
1: बिहार के रहने वाले हैं, छपरा जिला के।
0: जी
1: अभी पूना महाराष्ट्र में है।
0: आप सदाम ही ना बोल रहे हैं?
1: हाँ
0: जी जी
1: हाँ।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: ठीक है, थैंक यू,
0: वेलकम।

0: अटक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आएं कमलश्री कमलश्री कमलश्री बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के, और सिम की

0: कर रही हो ना, BSNL, Jio, Airtel, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:39 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि अनिल जी की तरफ से लिख रहे हैं कि पलके झुके और नम हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं मेरे कन्हैया कि आपके आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए। और काफ़ी प्यारी लाइन पहुंची हुई अनिल जी की तरफ से, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? और मैं आरजे भास्कर कुमार तेजस्वी और मुंगेर जमालपुर बिहार से, और मुझे भी बात करना है, कैसे होगा ये बताइए। और कुछ दोस्तों को आपके प्रोग्राम के माध्यम से नमस्कार बोलना चाहता हूँ, और नाम है उत्तम सोनी, रानी जी, समीर जी, मुकेश यादव, दिलीप राम, सबनम जी, विरजू भाई, श्री राम, राघव जी, खुशबू जी, और जो भी हमें जानते हैं उन सभी दोस्तों के अलावा जितने भी रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आरजे भास्कर जी, और आप जुड़े अच्छा लगा। और यहाँ पे मैसेज मेरे पास पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैडम जी, हम भी शो से जुड़ गए और हमारी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि श्याम सुंदर संग्रामपुर से जुड़े हुए हैं और वॉइस के माध्यम से इनकी फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
4: कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। प्लीज दीदी ये गाना सुनना है, सुना दीजिएगा।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894704 या 9198886973।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, जो कि सन्यासी जी लिख रहे हैं कि पैदा तो हम भी श्री कृष्ण हुए थे, पर जिंदगी की भाग दौड़ में भैरव बाबा बनाकर रख दिया। और काफ़ी इसमें भी इनकी मज़ेदार लाइनें पहुंच रही हैं, और यहाँ पे जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते जी, विकास गुप्ता भोरे गोपालगंज बिहार से जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी सारा का सारा कैसे हो सकता है, तुमसे मिलकर भी उदासी कम नहीं होती, तेरे बिना गुजारा कैसे हो सकता है। और सोनी जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहा है कि वो रुला कर गया अब मुस्कुराने की बात करता है, खुद ही आग लगा कर बुझाने की बात करता है, और जिसने तोड़ दिया मेरा दिल एक पल में, वहीं अब फिर से दिल लगाने की बात करता है। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है विकास गुप्ता जी की तरफ से, और लिख रहे हैं गाने का नाम भी भेजा हुआ हूँ, प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। और यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि शो की स्टार्टिंग में मैसेज की थी कितना पीछे चली गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है शो, और स्टार्टिंग में डिमांड करती हूँ ताकि जल्दी सॉन्ग प्ले हो जाए, तो आपका भी गाना प्ले किया जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं किया जाएगा। और इस आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, अभी उन्हीं लोगों के गाने को प्ले कर रही थी। और मैसेज करने वाली हैं प्रीति रायदास, तो गुस्सा नहीं होना है किसी को, और यहाँ पे आपका गाना प्ले करने जा रही हूँ, तो चलिए अपने गाने को इंजॉय कीजिए सभी के साथ। और गाने की बोल है तुम बंसी बजाते हो, और काफ़ी खूबसूरत गाना है, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, तुम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो। और मैसेज करने वाली थी प्रीति रायदास जी, और यहाँ पे उनकी तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, लेट सही पर बजा तो, और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। और यहाँ पे हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भास्कर भैया, कैसे हैं आप, रेडियो रिमझिम में वेलकम है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ आरजे भास्कर जी की तरफ से, लिख रहे हैं, सन्यासी रंजन बाबा को भी मेरा नमस्कार। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय भारती मैम, राधे राधे, दीपक चौहान यूपी 54 मऊ से मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से, और मैं भी शो से जुड़ गया हूं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि, हाय नमस्ते भारती मैम, गोविंद कुमार जलंधर पंजाब से जुड़ गया हूं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहां पे हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि, दीपक जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और मुझे गाना सुनना है, और खेसारी लाल की आवाज़ में गाना सुनना है और दर्द भरा गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए इनके लिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन जी लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण की 16 शरणानियाँ थीं, फिर भी वो अपने दोस्त सुदामा को नहीं भूले थे। आजकल के लड़के एक लड़की क्या पटाली साले फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। और काफ़ी हद तक आपकी बातें सही भी हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरी चाहते तुमसे अलग कब है, दिल की बातें तुमसे छुपी कब है, तुम साथ रहो दिल में धड़कन की जगह, फिर जिंदगी को सांस की जरूरत कब है। और भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, भास्कर जी को नमस्कार, और उत्तम भाई आपको रेडियो पे लाए बहुत बहुत शुक्रिया उनको। और भारती जी सारी रात जागती हो सुपर सॉन्ग दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दिल के सागर में लहरें उठाया ना करो, ख्वाब बनकर नींद चुराया ना करो, बहुत चोट लगती है मेरे दिल को, तुम ख्वाबों में आकर यूं तड़पाया ना करो। और भारती जी नमस्कार, तो मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, और मैसेज करने वाले हैं मनीष पासवान, और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, और गाने की बोल है तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती हो, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मनीष पासवान जी की तरफ से, और गाने की बोल थी तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आपको एंड सभी दोस्तों को, और लिख रहे हैं कि तेरे नाम से मेरी सुबह होती है, तेरी याद से मेरी शाम होती है, तू रहे मेरे दिल में हमेशा रोशनी बनकर, बस इतनी सी मेरी चाहत होती है। और नमस्ते नमस्कार डियर भारती जी, प्यार भरा नमस्कार है, तब क्या हाल है ज़रूर बताइएगा। और मेरे तरफ से कुछ खास लिसनर निशा भारती ओझवलिया, रानी मुखर्जी ऑफ रखुआ, और रुखसार खातून, आयशा खातून, सगुफ्ता फिरदौस, शिल्पी सुधा भारती, हजरा खातून और अनिल भैया को प्यार भरा नमस्कार, और सलाम बोलिएगा याद से। और मैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम शारजा सिटी यूएई दुबई से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ इसी के साथ इनके तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि इश्क की पतंगे उड़ान छोड़ दिया हमने भारती जी, वरना हर हसीनाओं के छत पे सिर्फ मेरे ही धागे मिला करते हैं। और बाय बाय टू ऑल माय फ्रेंड्स, और उसी के साथ जुड़े भी और बाय बाय भी, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि दूसरा भी मेरा मैसेज शामिल कर दीजिए, तो जी बिल्कुल, चलिए आपके दूसरे मैसेज को भी शामिल करते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तू पास नहीं हो मेरे फिर भी तुम्हारी याद से मोहब्बत की है, कभी तुमने भी मुझे याद किया होगा, मैंने उस लम्हात से और मोहब्बत की है, तुमसे मिला तो एक ख्वाब सा लगता है, और मैं तुम्हारा इंतज़ार से भी मोहब्बत की है, मैंने तुम्हारे इंतज़ार से भी मोहब्बत की है। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं दिलीप जी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है कॉल के माध्यम से, और कॉल नहीं ले सकती क्योंकि इनकी फरमाइश मैंने पूरी कर चुकी हूँ। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगली फरमाइश पहुँची हुई है विकास गुप्ता जी की तरफ से, भोरे गोपालगंज बिहार से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है मुझको तेरी ये बेवफाई मार डालेगी। और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है, बेवफाई है पर गाना बहुत ही मस्त है, तो इस गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी नमस्कार, आप सब रेडियो रिमझिम परिवार को सादर प्रणाम। पवन शाह ग्राम मड़ैया खगड़िया बिहार से और पवन सिंह का गाना सुनना चाहता हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती जी, प्रेम मधेसिया पडरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और भारती जी जय श्री कृष्ण राधे राधे जी। आप सभी दोस्तों और साथियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत शानदार गाना जुदाई मार डालेगी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, मैं न्यापारा विरई जिला बलोच छत्तीसगढ़ से और प्रमोद कुमार साहू रूपेश्वर ठाकुर भिम्भा ठाकुर, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई राधे राधे जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपको भी राधे राधे। और यहाँ मैसेज हमारे पास जो कि पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि आज बड़े भाई राम बाबू का हैप्पी बर्थडे है, उनके लिए कुछ दो लाइन बोल दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके बड़े भैया राम बाबू जी को पूरे रेडियो रिमझिम परिवार की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं कि आप आज बोलिए तो फरमाइश भेज दूं। तो जी आपके गाने की फरमाइश कर सकते हैं और बिल्कुल भेज सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आरजी भास्कर जी जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज भी पहुंचा हुआ है और गाने की लिंक भी पहुंची हुई है। तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल आदाब जय माता दी जय श्री कृष्ण राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, और मैं आपके बीच जुड़ गया हूँ रेडियो रिमझिम के माध्यम से, और मैडम जी का शो सुन रहा हूँ। बहुत ही प्रोग्राम प्यारा सा चला रहे हैं वो, और सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा प्यार से प्यारे दिल से हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम आदाब नमस्कार। तो दोस्तों मैं भी एक फरमाइश लेकर आया हूँ, और मैम हमारी फरमाइश को जरूर से पूरी करेंगे आशा करते हैं। और दिलीप राम जी, उत्तम जी, रानी जी और सन्यासी रंजन बाबा और कामरान भाई, वर्जू भाई और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वाले हैं रेडियो रिमझिम को, उन सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। के साथ साथ उनको गाना डेडिकेट रहेगा और लिंक मैं भेज रहा हूँ नीचे, और एक छोटा सा अर्ज किया है कि कहते हैं ना दोस्तों कि तू शोर मचाता रह, मेरी खामोशी ही तेरा जवाब है। कि तू शोर मचाता रह, मेरी खामोशी ही तेरा जवाब है, मेरी तरक्की को देख तेरा जलना तो लाजवाब है। कोशिशें बहुत की तूने मुझे मिट्टी में मिलाने की, पर मैं वो बीज हूं जिसका खिलना ही तेरा ख्वाब है। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा वो जो गाना है ये प्ले करेंगी मैम जी, और गाने के बोल हैं ड्रीम गर्ल मूवी से है। और एक मुलाकात में बात ही बात में ऐसे कुछ गाना है, और आप सुनिए, मैं ज्यादा गा दूंगा तो आप फिर सुनिएगा नहीं। तो चलिए हमें दीजिए जाने की इजाजत, और चलिए एक और भोजपुरी शायरी के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। और ये है कि हमार नियत साफ हुआ, अरे हमार नियत साफ हुआ, केहू के गवाही के दरकार नखे, जो खुदा के मानलस ओकरा केहू से हार नखे। हजारों तोहमत लगावे दुनिया हमरा मासूमियत पर हमरा ईमान डिगा दे ऐसन कौनो हथियार नाखे। सलाम आदाब दुआ, दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, बाय बाय टेक केयर।
0: और काफ़ी खूबसूरत वॉइस के साथ जुड़े हुए हैं भास्कर जी, और यहाँ पे उनके तरफ से जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, प्ले करती हूँ। आप सभी इंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9435 6551 या 97।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:31 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ हमारे पास अभी भी काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि यहाँ आरजे भास्कर जी की तरफ से फीडबैक मैसेज पहुँच गया और लिख रहे हैं थैंक्स गाना प्ले किए, तो चलिए इनका फीडबैक मैसेज भी शामिल करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भारती मैम, मैं अपना गाना सुन रहा हूँ, आपने प्ले किया और बहुत अच्छा लग रहा है रेडियो जशन से जुड़ने के बाद और आपकी प्यारी सी आवाज सुनने के बाद और प्यारे प्यारे गाने सुनने के बाद। दोस्तों की भी जो फरमाइश है बहुत ही लाजवाब आ रही है, तो चलिए आप लोग दोस्तों इसी तरह सुनते रहे हमारा रेडियो रेडियो रेडियो रिमझिम, रेडियो रिमझिम को ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहे बारिश की तरह और मजा आ रहा है प्रोग्राम में, आप लोग भी कीजिए एंजॉय टू कंटिन्यू टू बी एंजॉय दिस रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम। थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।
0: और काफ़ी खूबसूरत फीडबैक पहुंचा हुआ है आरजे भास्कर जी की तरफ से और इसके लिए आपका धन्यवाद। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी राधे कृष्ण का सॉन्ग बजाइए और हिम्मत, अगर मूवी का है तो बजा देना, नहीं तो एल्बम मत बजाइएगा। और लिख रहे हैं कि जी मूवी का ही सॉन्ग चल रहा है, एल्बम नहीं बज रहा है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि धनेश जी मज़ेदार जोक्स पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊँगा कि आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूँगा। और तब माँ बोली कि माँ ने भी

बहुत ही खूबसूरत भास्कर भैया लाजवाब लाइन और गर्दा उड़ा दिए हैं और लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। और इसी के साथ जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रही हैं कि नमस्ते दी, मेरा नाम रानी कुमारी है और मेरा घर है हरखुआ और मेरी तरफ से सारे दोस्तों को राधे राधे। और आप कैसी हैं बताइए ज़रूर। तो मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। और बहुत अच्छा लगा भास्कर जी को रेडियो रिमझिम में सुनकर, और वेलकम है रेडियो रिमझिम में उनका। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि प्रेम मधेसिया पर रौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं। और लिख रहे हैं भारती जी गाना सुनवा दीजिएगा, और गाने की बोल है तेरे चेहरे में वो जादू है, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: प्रेम मधेसिया जी की तरफ से काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, और यहाँ पे जो कि इनकी तरफ से फीडबैक मैसेज पहुँच गया है, लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, और वॉइस में भी भेजे हुए हैं, तो प्ले करते हैं इनके वॉइस को।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, दिल से शुक्रिया आपका।
0: और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम, नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम अखिलेश मेहताब है और मैं हिजरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से हूँ, और कल आपने हमारा मैसेज शामिल कर दिया था मैम और पढ़ दिया था, आपने हमें सुना था और यह सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, और हम भी आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और हम अपने चार भाइयों का नाम भी बताना चाहते हैं, और हमारे भाइयों का नाम है जो कि लिख रहे हैं अखिलेश मेहताब और कि मिथिलेश महतो, निकेश मेहताब और विकास मेहताब, और आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, और चारों भाई हम लोग गोपालगंज जब काम करते थे तभी से सुनते हैं, और वहाँ पर हम लोग आपके प्रोग्राम से जो भी रेडियो सुनते हैं, और हमें जो कल फरमाइश की थी मैंने और आपने नहीं बजाया क्योंकि एक हफ्ता मेरा नहीं पूजा है, तो आज भी इसलिए फरमाइश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक हफ्ता नहीं पूजा है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपको तो आज भी इसलिए फरमाइश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक हफ्ता नहीं पूजा है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपको रूल्स पता है, ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि दिलीप जी की अजब मौसम है, मेरे हर कदम में फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है, मैं जब सो जाऊँ इन आँखों पे अपने होठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। और भारती जी नमस्कार, और भास्कर जी का सुपर सॉन्ग दिलीप राम। और यहाँ भास्कर जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं रानी जी को मेरा नमस्कार, और रानी जी आपकी आवाज़ बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला, मतलब आपका मैसेज अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच वेलकम करने के लिए। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी नमस्कार, आप सब रेडियो रिमझिम परिवार का सादर प्रणाम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यह हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
2: राधे राधे।
0: राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: गाना सुनना है मैं।
0: जी बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
2: श्याम तेरे वर्ण की पुकारे राधा नाम।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
2: श्रोता को।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम।

0: ठक
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलते हैं। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि हेलो भारती मैम, आपके कार्यक्रम से हम भी जुड़ गए हैं और आपके लिए एक शायरी है। और लिख रही हैं कि मारी को रंग किया, हजारों को तंग किया, लाखों को छोड़कर बस आपको ही पसंद किया। भारती मैम, माय नेम इज रेशमा खातून पठानपट्टी से, और नाम इसलिए लिख रही हूँ कि दोबारा आप भूल ना जाएं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको भूल गई हूँ, आप भी मुझे याद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। और लिख रही हैं कि मनोरमा जी के लिए भी एक शायरी है, और लिख रही हैं कि चम्मच में जीरा, मनोरमा जी लाखों में हीरा। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं रेशमा जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जी मैम जी नमस्कार, भारती मैम जी, और मैं हिजरा नवादा संग्रामपुर से बोला तानी मिथिलेश चौहान, और हमारा एक गाना सुना दीजिएगा और भेज दिले वानी लिंक रेडियो रिमझिम के काम करने वाले के सभी नमस्कार, और आपको भी नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं दिलीप राम जी की, कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। मैंने भी जिंदगी को करीब से देखा है, मेरे दोस्त मुश्किल में कोई साथ नहीं देता आंसू के सिवा। और भारती जी नमस्कार, तो आप कितनी बार नमस्कार कहिएगा मुझे, और मैंने सुन लिया है, आपको भी मेरा नमस्कार है। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और पवन साग ग्राम मड़ैया खगड़िया बिहार से जुड़े हुए हैं और पवन सिंह का गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है तुझे ना देखूं तो चैन, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा गाना चल रहा है मैडम जी, हमारे दोस्त लोग सुनने वाले हैं और हमारा भी गाना बजा देते तो अच्छा होता, और गाना सुनवाना चाहते हैं अपने दोस्तों को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी, और आपके भी गाने को प्ले करूँगी। पर उससे पहले यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम, हम भी जुड़ चुके हैं और इजरा नवादा थाना संग्रामपुर से सोनालाल जी, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आरजे भास्कर जी लिख रहे हैं कि तेरी यादों में खोकर मैंने खाना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना और मुस्कुराना छोड़ दिया, इतना गहरा असर हुआ है तेरे प्यार का कि मैंने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा कर छोड़ दिया। और काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि दिलीप राम जी, कितनी बार आप नमस्कार कीजिएगा भारती मैम को भास्कर। और यहाँ पे हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं, बहुत बढ़िया सॉन्ग लगा, दिल खुश हो गया। और यहाँ इनकी तरफ से मज़ेदार जोक्स पहुँचे हुए हैं, लिख रहे हैं कि डॉक्टर मरीज से, अगर तू मेरी दवा से ठीक हो गया तो मुझे क्या इनाम दोगे। मरीज, साहब मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। और काफ़ी मज़ेदार लाइन है, और ऐसी चुटकुले कहाँ से ढूंढ के लाते हैं धनेश जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि मैडम जी, हमारा फेवरेट हीरो का गाना बहुत अच्छा चल रहा है, और मैसेज करने वाली हैं रेशमा जी। और इसी के साथ यहाँ फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है शमशाद अली मुरादाबाद यूपी 21 से जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं कि लंबी है मंजिल पास है किनारा, क्यों नहीं आता अब फोन तुम्हारा, भूल गए नाम या नंबर हमारा, या मिल गई कोई दोस्त हमसे भी प्यारा, तो क्या बात है शमशाद जी। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है। और यहाँ पे हमारे पास जो कि अगले गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं आफ्ताब आलम और सन के खास से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से गाने की जो कि फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं गाने की बोल है कुछ कुछ होता है, और काफ़ी खूबसूरत गाना है। तो चलिए इनके लिए कुछ कुछ होता है मूवी का टाइटल ट्रैक ही है, तो इसी को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे आफ्ताब जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और गाने की बोल थी कुछ कुछ होता है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं आफ्ताब जी की, थैंक्स मैम मेरा गाना प्ले की इसके लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती जी, राधे राधे, न्यायपारा विरई से लीला साहू, किरण भाभी, चंद्र प्रभा भाभी, मुझे भी गाना सुनना है, सुनवा दीजिएगा मैडम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी, और आप सबका भी गाना प्ले होगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी, आप जब हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हंसने के लिए भेज देते हैं, और आपको हंसाने के लिए मैं खुद को रुला लूँगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप मुझे हंसाने के लिए खुद को क्यों रुलाएंगे, आप भी हंसे तो। आप भी यूं ही हंसते रहिए और ऐसे ही मज़ेदार चुटकुला भेजते रहिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि हाय, और प्रीति कुमारी देवी कोटवा से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और यहाँ लिख रहे हैं कि भारती जी एक कॉल करना चाहते हैं, बोलिएगा। तो आपकी बातें मैं पूरी तरह समझ नहीं पाई, बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है, और मिथिलेश चौहान जुड़े हुए हैं हमारे साथ और गाना सुनना चाहते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ, और भाई सोनू लाल भाई और तबरेज़ भाई, ठाकुर भैया, और यह सब सुनने वाले हैं लोग, गाना जल्दी से बजा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए आपका गाना प्ले करते हैं, और गाने की बोल है शिमला की नज़ारा लागे लू, और शिल्पी राज की आवाज़ में गाना है। तो चलिए आपके लिए गाना प्ले कर देती हूँ, इन्जॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज की तरफ, और हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी दोपहर न्यूज के बाद। तब तक इस गाने को आप सभी इंजॉय करते रहिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि मिथिलेश जी के लिए थैंक यू गाना सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनालाल जी। और यहाँ मिथिलेश चौहान जी की तरफ से भी थैंक यू का मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना प्ले किए इसके लिए। तो इन्जॉय कीजिए अपने गाने।

0: 282. Festival of Janmashtami being celebrated across the country. IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that GSLV.
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करूबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार, एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करूबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहें। एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
6: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया। साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य

0: आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
8: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं।

0: साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710 3992 या 9765

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 91। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277166596। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे अभी भी मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि एक बार फिर से शमशाद अली मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं, मेरे प्यार को बेवफाई का नाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई, मैंने कहा मेरे दिल में दर्द है तेरे बिना, वो पगली जाते जाते झाड़ू और झंडू बाम दे गई। और काफ़ी बढ़िया और मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है शमशाद जी की तरफ से, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि तुझे ना देखूँ तो दिल घबराता है, ऐसा ऐसा गाना कहाँ से लाते हैं भारती जी, और यह ज़रूर बताइएगा। तो गाना ये सारे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं प्ले कर देती हूँ आप सभी के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं जय माता दी, मैं आदित्य कुमार जम्मू एंड कश्मीर से आपका प्रोग्राम ऑनलाइन सुन रहा हूँ, और मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिएगा जो कि लिंक भेज दिया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके भी गाने को कल ही मैंने प्ले किया था, इसीलिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी नमस्कार, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, राधे राधे, और आज मेरा भी गाना बजा दीजिएगा मैडम जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं राहुल कुशवाहा, और लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है, और गाने की बोल है कसम खा के कहो, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
7: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और सो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी के बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास राहुल जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू भारती जी सॉन्ग प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है रानी जी की तरफ से, जो कि लिख रही हैं कि बड़ा नीक बगा जी सॉन्ग, तो गाना तो निक बढ़ ही बा, लेकिन ई रुआ जो निक शब्द बोले नहीं रुआ मुँह से बड़ा अच्छा लागे ला जी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा, जो कि लिखत है नहीं कि धनेश कुमार मिश्रा जी लिख रहे हैं कि एक लड़का लड़की देखने गया, लड़की पसंद आने पर लड़के ने लड़की से कहा, तुम तो मुझे पसंद हो पर क्या तुम्हारे पापा की हैसियत है मुझे कार देने की। इस पर लड़की ने सॉलिड आंसर दिया, लड़की मेरे बाप की हैसियत तो एरोप्लेन देने की है, पर क्या तेरे बाप की हैसियत है एयरपोर्ट बनवाने की। और काफ़ी बढ़िया लाइन के साथ जुड़े हुए हैं फिर से धनेश जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं नमस्ते, हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हम सचिन कुमार पुखरा भिंदा नोनिया टोला से, और अभी हम राजस्थान से सुनतनी, और आज बहुत दिन बाद आया हूँ, और मेरा भी सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं हेलो हाय भारती जी कैसी हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरा धुन से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैडम जी, सुमित कुमार गुमराह से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ मेरे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। दीपक चौहान यूपी चौहान मऊ के रहने वाले हैं और गाना सुनना चाहते हैं। सोनाली केवल मूवी से सॉन्ग है एक मुलाकात हो तुम मेरे साथ हो, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए इनके लिए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
10: प्रभु सोनाली दत्ताराम तांडेल
11: कैसी

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग और काफ़ी अच्छा गाना था। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं दीपक चौहान जी की, धन्यवाद जी गाना सुनाने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है, नाइस सॉन्ग भारती मैम। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव दुबई से, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम नमस्कार, हम भी गाना सुनना है। और मैं सत्यम त्रिपाठी कानपुर से, यूपी से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस शो में। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी मैं अभी देहरादून में नहीं हूँ और मैं देहरादून जा रहा हूँ ट्रेन से, तो जी आपके नाम के साथ देहरादून हमेशा आप जुड़ते हैं देहरादून से, तो आदत सी हो गई है देहरादून बोलने की, तो इसीलिए बोल दिए देहरादून से। और वैसे भी आप जा भी तो रहे हैं देहरादून। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है धनेश जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं, प्यार तो ज़िंदगी का अफसाना है भारती जी, प्यार का तो अपना ही एक तराना है भारती जी, सबको पता है कि इश्क में सिर्फ मिलते आंसू ही हैं भारती जी, फिर भी ये जमाना इसका दीवाना है भारती जी, ऐसा क्यों होता है जी बताना। और ऐसा क्यों होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, और ये तो जिन जिन को प्यार हुआ है उन्हीं से पूछना पड़ेगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मुझे गाना सुनना है और गाने की बोल पहुँची हुई है, तो जी आपके भी गाने को प्ले करूँगी। और उससे पहले यहाँ पे हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं लिख रहे हैं कि सॉन्ग सुनना है और गाने की बोल है, बड़ा पछताओगे, और गाना सुनवाना चाहता हूँ राजकुमार, मुन्ना जी, शैलेश कुमार और सभी दोस्तों को। और सचिन कुमार जी की तरफ से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे। और गाना भी बहुत ही बढ़िया है, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:13 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मेरा गाना प्ले की इसके लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा जी। तो जी बिल्कुल, आपका भी नंबर आएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम, राधे राधे पाजी UP 54 से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि पल पल उसका साथ निभाते हम, एक इशारे पर दुनिया छोड़ जाते हम, समुंदर के बीच पहुँचकर फरेब किया उसने, वह कहते तो किनारे पर ही डूब जाते हम। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं पाजी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि एक मुलाकात में सॉन्ग क्या लोग, मुझे भी गाना सुनना है। और गाने की बोल पहुंच गई है, और मैसेज करने वाले हैं सत्यम त्रिपाठी कानपुर से, यूपी से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी गाना प्ले करूंगी, पर उससे पहले यहाँ पे जो कि मेरे पास गाने की फरमाइश पहुंच गई है, लिख रहे हैं कि न्यायपारा विरई लीला साहू, किरण भाभी, चंद्र प्रभा भाभी, मुझे गाना सुनना है, सुना दीजिएगा मैडम जी। और गाने की बोल है तुमसे मिलकर न जाने क्यों, और फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग था। और मैसेज करने वाले हैं जो कि लिख रहे हैं कि धन्यवाद भारती जी गाना सुनाने के लिए, और लीला साहू, किरण साहू, चंद्र प्रभा साहू, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने इन्जॉय किया ये सुन के, अच्छा लगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, मैं रोहित कुमार हैदराबाद से, और हमें भी गाना सुना दीजिएगा और सॉन्ग का नाम भेज रहा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज हमारे पास

0: पहुंचा हुआ है और गाने की बोल भी पहुंची हुई है। लिख रहे हैं कि सत्यम त्रिपाठी जी, मुझे गाना सुनना है और गाने की बोल है क्या लोगे तुम, और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: लगता रूम में रह गया।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 97 65 65 750।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुमित कुमार गुमराह से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, बर्बादी हुई बर्बादी हुई, बाकी शादी हुई तोरे से। ओहो, और बहुत दिनों के बाद इस गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए आज इस गाने को प्ले करते हैं। शिल्पी राज की आवाज़ में गाना है, तो एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे शिल्पी राज की आवाज़ में काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग बर्बादी हुई, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती मैम हमारा गनवा नहीं बजेगा क्या तुझे आपका भी बजेगा, और लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून बजाजी रोड लालगंज एमडी नौसाद जुड़े हुए हैं और एमडी सदाम भी जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं कि और साथ में मोहम्मद निसार अल मोहम्मद रिजवान और अभिनंदन टेलर भी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और रोहित कुमार हैदराबाद से जुड़े हुए हैं और इनकी तरफ से गाने की बोल पहुंची हुई है, और गाने की बोल है दिल इबादत कर रहा है, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम सभी सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग, और मैसेज करने वाले थे रोहित कुमार हैदराबाद से, और लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच मैम गाना बजाने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? मैं अरविंद कुमार, अभी हम पुणे से आपका रेडियो का कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपका आवाज़ बहुत अच्छा, और मेरे साथ परवीन सर जी भी जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना तो प्ले होगा, पर उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि कोई भी गीत में शामिल कर लेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। और हम भी रेडियो रिमझिम में जुड़ गए हैं और रिमझिम के सारे स्टाफ को किशोर सबलानिया परिवार की तरफ से नमस्कार जी। और यहाँ पे मैसेज लिखे हैं कि गुरु नानक पूरा बठिंडा पंजाब से किशोर सबलानिया, सावित्री सबलानिया और सुमन सबलानिया और बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है धनेश जी की तरफ से, लिख रहे हैं भारती जी बहुत दिनों के बाद आज बर्बादी हुआ है। तो जी बिल्कुल, आज बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि रंजीत कुशवाहा महुआ वैशाली बिहार से जुड़े हैं, तो लिख रहे हैं हैप्पी जन्माष्टमी भारती मैम, तो आपको भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नौशाद जी की, मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए, और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए प्ले करते हैं और सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: मैम नमस्कार, सोनी मैम, मैं नौशाद लालगंज बयाजी रोड सोनारपट्टी से बोल रहा हूँ। मेरा एक गाना है सावन फिल्म से, जान को मेरी छीन लिया है, और ये गाना सभी को डेडिकेट है, स्पेशली आपको और श्रुति मैम। कहाँ हैं, उनका प्रोग्राम आजकल नहीं हो रही है, और जितने भी रिमझिम सुनने वाले हैं सभी को ये गाना डेडिकेट है, और हमारे लालगंज से सभी हैं, एमडी शादाब है, निशार है, जावेद है, दिलीप भाई है, एमडी राजा है, और जो भी सुन रहा है सभी को ये गाना डेडिकेट है। थैंक यू मैम, लालगंज से मोहम्मद नौशाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
6: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम सुनाने के खातिर, और साथ में मोहम्मद केरला से भी जुड़े हुए हैं और मैसेज करने वाले हैं नौसाद जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको गाना अच्छा लगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग है, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि राधे राधे भारती जी, मेरे बेटी बेटा का नाम सुनाइएगा क्या, न्यायपारा विरई जिला बलोद से, और राहुल साहू, यमन साहू, कल्याणी साहू, जमीनी साहू, मैं इनकी चाची लीला साहू, प्लीज़ बोल दें और कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दो मच्छर स्टडी कर रहे थे, पहला मच्छर, मैं तो आगे डॉक्टर बनूँगा, दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूँगा। इतने में आंटी ने मोर्टिन जला दिया, दोनों मच्छर बोले बुढ़िया ने सारा कैरियर खराब कर दिया। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हैं दिनेश जी, और लिख रहे हैं कि आज के लिए लास्ट बस, और साथ में बाय बाय बोल रहा हूँ आपको, तो आपको भी बाय बाय। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया चल रहा है और आपका भी पेशकारी प्रोग्राम की हमें बहुत पसंद आई, और तहे दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ और गाने की फरमाइश पहुँची हुई अरविंद कुमार जी की तरफ से, और गाना सुनवाना चाहते हैं ये पवन सर जी को, और गाने की बोल पहुँची हुई है चाहत की लग आग, चाहत की लग जाएगी, और काफ़ी खूबसूरत सा गाना है, तो गाना प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रंजन।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी, दिल्ली बहुत तेज बारिश हो रही है। तो क्या बात है, आपकी तरफ बारिश हो रही है। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है सभी की तरफ से, बाय बाय के मैसेज पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मैं आदित्य कुमार जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ हूँ, आपके प्रोग्राम ऑनलाइन शो में सुन रहा हूँ और लिंक भेज दिया हूँ, गाना प्ले कर दीजिएगा। और गाने की बोल है तो हमरा के भूल गई लू, पर लक्की राजा का सैड सॉन्ग है, तो चलिए आपके लिए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। और यहाँ हमारे पास सभी की तरफ से मैसेज पहुँच गए हैं बाय बाय के, और यदि आप हमसे इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277166696। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी के लिए आज फिर से एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इसी के साथ एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करते हुए मैं लूंगी आप सभी से विदा। तो गाना आप सभी एंजॉय कीजिए, और गाने की बोल है मैया यशोदा। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि भारती जी, हमारा बाय बाय, हमरो बाय बाय बार हुआ के, तो बहुत बहुत बाय बाय आपको भी। और यहाँ पे चलिए गाना प्ले करते हुए लेते हैं आप सभी से विदा। आप सभी इस गाने को एंजॉय करते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10
1: मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 9939966999।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856555।
1: घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तो जान ले लेगा, क्या करूं?
4: अब चिंता छोड़िए।
5: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
6: हेलो,
7: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नाम बता दीजिए अपना।
6: आप भारती बोल रहे हैं ना?
7: नहीं,
6: आपका सब तो फोन में बात ही नहीं होता है ना। मैं गोपाल बोल रहा हूँ बेंगल से।
7: जी जी, कैसे?
6: हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका बिहार का हालचाल कैसे है बोलिए? वो जो नेपाल का जो पानी बह रहा है ना, बोलते जो गोपालगंज में, हम कल मोबाइल में देखे वीडियो, बड़ा बड़ा मछली का सच है क्या?
7: जी, अभी तो गोपालगंज में प्रवेश नहीं किया है।
6: वो जो मोबाइल देख रहा है नदी में जो बह गया ना?
7: जी जी,
6: वो बता रहा था, हम देखे मोबाइल में वीडियो।
7: जी जी, गोपालगंज के आसपास के एरिया में आया हूँ।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका वहाँ पर तो ठीक ही है ना सब, हालचाल ठीक है ना
7: यहाँ पे सब?
6: आप कैसे हैं?
7: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
6: और सोनी जी?
7: सोनी जी भी अच्छी हैं।
6: और मैं तो व्हाट्सएप कॉल में कॉल करती हूँ, व्हाट्सएप जो मैसेज देती हूँ आपको, तो आप तो मेरा तो गाना नहीं सुनाते हैं कई दिन से, मैं 3 हफ्ता हो गया तो। हाँ, आज तो ये 5 बजे का प्रोग्राम है ना ये तो?
7: जी।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरा तो एक रिक्वेस्ट है, वो मुद्दत मूवी है ना, मुद्दत मिथुन और जया प्रदा का एक गाना है ना, मोहम्मद अजीज और आशा भोसले का प्यार हमारा अमर रहेगा, वो गाना तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और ये गाना मैं डेडिकेट सबको करती हूँ, रिमझिम परिवार को और सारे लिसनर्स को, तो ये गाना मेरा सुना दीजिएगा।
7: जी,
6: मैं रेडियो रिमझिम मोबाइल में आपके सुनती हूँ।
7: आपके माध्यम से कितने समय से सुनते आ रहे हैं?
6: देखिए, दोपहर का प्रोग्राम मैं खाली सुनती हूँ, क्योंकि बोले तो मेरा जो मैं जब यहाँ से दुकान से जाती हूँ ना, उस टाइम लंच का टाइम होता है, तो घर पे मैं आपका जो रिमझिम का प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम मैं चला देती हूँ। सबका घर में सभी सुनते हैं, अच्छे लगते हैं। और 5 बजे हम सुनते हैं, 5 बजे जरा वो दुकान में कस्टमर आ जाता है ना, उस टाइम में कभी सुना ही नहीं देता, तो वो रात में मेरा जो कोई मेरा जो रिक्वेस्ट है, वो रात को 12 बजे से मैं सुन सकती हूँ।
7: जी जी,
6: रात 1:30 बजे तक आप देते हैं ना वो जो रिकॉर्डिंग, तो मैं रात में सुनती हूँ।
7: जी, और
6: तो आपका रिमझिम ये प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं प्रोग्राम, जो गाना जो आप लोग सुनाते हैं और जो आपके सभी लिसनर जो गाना रिक्वेस्ट करते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। और भोजपुरी भी गाना भी अच्छे लगते हैं, हम भोजपुरी भी गाना हम सुनते हैं, बहुत फिल्में हम देखे हैं भोजपुरी, ऐसी इसलिए गाना तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। और गाना सुन के मैं बहुत सारे घर का काम करती हूँ, जानते हैं आप। गाना जब लगा देती हो घर में कोई काम जो बड़ा हो छोटा हो मैं एकदम झटके में कर देती हूँ।
7: तो बहुत अच्छी की बात है।
6: आप बेंगलोर में नहीं आते क्या?
7: अभी तो नहीं गए हैं।
6: सिलीगुड़ी नहीं आते आप?
7: नहीं।
6: क्यों? सिलीगुड़ी आइए, घूम के जाइए।
7: जी जी बिल्कुल आएंगे।
6: दुर्गा पूजा में आइए और मेरा ये जो नंबर है हम लोग को कॉल कीजिएगा। मेरा जो मार्केट है ना, मेरा घर के सामने पाइनएप्पल मार्केट है। यहाँ का पाइनएप्पल आपको उधर सब जगह में जाते हैं। मेरा जो का गांव का नाम है विधाननगर, जगन्नाथपुर। विधाननगर का पाइनएप्पल फेमस है। छठ पूजा में, छठ पूजा के एक हफ्ते के मैंने दिवाली के टाइम के समय से, ठीक है, छठ पूजा के दो दिन आगे तक इतना सारा पाइनएप्पल यहाँ पर गाड़ी लोड होता है। जो बड़ा बड़ा गाड़ी 16 चक्का 18 चक्का गाड़ी बहुत सारे और यहाँ पर का खरीदार यहाँ पर आते हैं। यहाँ से बागान से खरीद करके जो यहाँ पर गदी है वो मार्केट से खरीद करके ले जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर का तो पाइनएप्पल फेमस है। तो आइए एक दिन हमारा गांव में घूम के जाइए।
7: बिल्कुल जरूर आएंगे।
6: एक दिन आइए यहाँ पर, मेरा हमको कॉल कीजिएगा, हम ठीक आपको रिसीव कर लूंगा। मेरा घर भी आप देख जाइएगा, गरीब का घर है, देख जाइएगा।
7: जी जरूर आएंगे और आपसे मिलेंगे।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू।
7: तो फिर प्ले करते हैं गाना।
6: अच्छा अच्छा ठीक है, आप प्ले कर दीजिएगा, गाना बहुत ही अच्छा रहेगा शायद। पानी अभी तो पानी हो रहा है बहुत, हाँ जोर से पानी अभी हो रहा है। अभी एक महीने के बाद पानी हो रहा है। यहाँ का पानी होता है कैसे बोलिए तो झट से आते हैं चला जा रहा है। लेकिन आज जन्माष्टमी है ना, जन्माष्टमी में तो पानी होती है।
7: जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10
1: सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856।
2: हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: तो जान ले लेगा, क्या करूं?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
6: Now pick your phone up.
7: Hello?
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello?
6: Now pick your phone up.
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
10: ठीक है जी, रेडियो रिमझिम तो बहुत दिल सुन रहे हैं। रेडियो रिमझिम बहुत दिल से हम सुन रहे हैं।
9: अच्छा जी,
10: हाँ, तो रेडियो रिमझिम पर हमको एक गाना सुनना है।
9: जी, गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए।
10: हमारा नाम है बद्री नारायण मुनि, ग्राम भोले, जामु बाजार, जिला सीमांत। तो हमको गाना सुनाने मेहदी हसन की आवाज में एक गजल है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी यूपी।
9: क्या आप दुल्हन जाके

0: है, जल्दी समझा नहीं है, ये है बहुत अच्छा गजल है।
1: जी जी
0: हाँ,
1: ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
0: हम सुनाना चाहते हैं जितने दिन जी हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो सबको सुनवाना चाहते हैं और आपको सुनवाना चाहते हैं, जितना दिन परिवार है सबको सुनवाना चाहते हैं।
1: तो फिर करते हैं गाना आपका।
0: हाँ ठीक है।

0: हेलो,
1: वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: आपका भी स्वागत।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: रवीना खतून।
1: कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: पेथोलिया से। हमको गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
0: राजा हमको बनारस घुमाए।
1: क्या आप दो लाइन गा के बता सकती हैं मुझे?
0: नहीं आते।
1: दो लाइन ही गाना है आपको?
0: राजा हमको बनारस घुमाए।
1: ये गाना किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: हाँ, हसीना खातून का सुनना है, जोरा खातून का सुनना है, और मेरी बुआ है।
1: वैसे क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं?
0: यस।
1: किस क्लास की पढ़ाई करती हैं?
0: फोर।
1: कैसी चल रही है पढ़ाई?
0: अच्छी चल रही है।
1: ये बढ़िया। तो फिर रवीना जी आपका गाना प्ले करते हैं?
0: कब सुनाइएगा?
1: शाम को चलेगा, 5 से 7 के बीच।
0: ठीक है, थैंक यू मैम।
1: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-4।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: Now pick your phone up.
7: Hello?
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello?
6: Now pick your phone up.
7: Hello?
8: Jab phone ring de bajte hai to kehte hain hello.
9: Hello.
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: अस्सलाम वालेकुम मैम।
12: वालेकुम अस्सलाम,
11: कैसे हैं?
12: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसी हैं?
11: हम भी ठीक हैं।
12: तो क्या हो रहा है?
11: कुछ नहीं, आप ही को फोन लगा रहे थे।
12: अच्छा जी,
11: हाँ
12: चलिए, लग गया ना। वैसे नाम बता दीजिए।
11: खुशी, पठानपट्टी से।
12: तो कैसी हैं आप?
11: ठीक है। मैंने गाना बजा दीजिएगा।
12: बता दीजिए।
11: नहीं है, पापा मैं तेरी मल्लिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार

0: और ये गाना
1: वाला में जाएगा।
0: जी जी बहुत अच्छा गाना है और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
2: हाँ आप लोग सुनेंगे और सब कोई सुनेगा।
0: खुशी जी प्ले करते हैं गाना आपका।
2: थैंक यू मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो,
1: सुनो।
0: वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM। जी बढ़िया वाणी, अपन बताएं।
1: ठीक बनना
0: तब क्या होता है?
1: बस बराबर सोचिए, फोन लगाए टाइम तक हो गया, आधा घंटा और टाइम रहा ना। कहने ना बस यार, कल मैं देखो
0: खाना वाना हो गई,
1: बड़ा फिर नाश्ता हो गया। दो बजे से लंच हो, 2 बजे से अच्छा हो गया, खाना 2 बजे ले हुई।
0: अच्छा
1: ठीक बने लो।
0: जी जी
1: तुम्हें ठीक हुआ?
0: हाँ ठीक हुआ।
1: नाश्ता कर लो।
0: हाँ हाँ नाश्ता हो गई
1: है।
0: जी सबके बढ़िया बात। फिर आज की फरमाइश बता दी।
1: आज बता तो हिंदी गाना सुना दे।
0: बता दी
1: जितना मैं चाहूँ तुझे कोई कुछ सुनना चाहे।
0: और गाना सुनवाए के भी बात।
1: हाँ अगर सुने सब कोई सुनी दे मतलब सुना था बोल रहे।
0: जी जी
1: पहचान तो नहीं।
0: हाँ पहचान तो नहीं, लेकिन फिर भी बता दी नाम।
1: कैसा बोलते तो शाम को कितने
0: कल तो बड़ा नहीं मन सारी खुले रहे।
1: हाँ सुना ही
0: कल हम ही मतलब पढ़ती तो भाती जी कहते नहीं हमारे खातिर बनी मार के तो हम
1: पढ़े
0: ठीक खातिर
1: ठीक
0: जी सुना सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं,
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर।
2: इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231,
2: कॉल कीजिए 90-066-7231, जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
8: Hello.
7: Pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
9: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: जी मैडम जी नमस्कार।
9: नमस्कार
10: जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश से।
9: जी जी क्या हाल चाल है
10: मैडम जी? बरसात हो रही है हमारे इधर तो, और जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।
9: जी जी आपको भी।
10: जी कौन भारती मैम बोल रही? सोनी मैम
9: नहीं,
10: अनुरमा मैम बोल रही है।
9: जी जी
10: जी नमस्कार मैडम जी, खाना वाना हो गया आपका?
9: और आपका हुआ?
10: नहीं आज तो मेरा उपवास है तो रात को ही खुलेगा वो तो।
9: अच्छा जी
10: जी,
9: तो अभी क्या हो रहा था?
10: कुछ नहीं दीदी, सुन रहे हैं भजन भजन और बरसात हो रही है घर पर ही है आज तो। जी
9: लगातार बारिश हो रही है उधर?
10: जी रात भर का पानी गिर रहा है और अभी भी पानी गिर रहा है, आज तो हम दुकान पे भी नहीं जा पाए, घर पर ही बैठे हैं।
9: अच्छा जी, इतना तेज बारिश हो रहा है?
10: जी, और बाजार में कोई पब्लिक भी नहीं आ रही है तो क्या करें, तो मैंने कहा आज बच्चों के साथ ही करें एंजॉय।
9: बिल्कुल
10: जी, तो पिक्चर का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम और गाने के बोले यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
9: ओके, और डेडिकेट भी है?
10: जी मैडम जी आपको है और हमारी सभी मैम है जितनी भी रेडियो में है उनको ये गाना डेडिकेट रहेगा, और गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझारी है, जितेन ठाकर जी है, इन सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
9: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
10: कब बजेगा ये?
9: शाम को।
10: आज?
9: जी जी
10: जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
9: जी तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देती है मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूरती रहती हो मुझे, तुम्हीं ने तो जादू डाला है मुझ पे।

0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। जी क्या हाल चल
1: रहा?
0: सर ठीक बानी सर,
1: चलिए ठीक है, काम जी जा रहा है तहाँ ठीक रहे।
0: तो बता दी आज कौन सा गाना सुने बाबा?
1: हमारा गाना सुना दी बाबुल कर दो विदा आज तू प्यार से।
0: अच्छा, और ये गाना क्यों किस मेरे को करे?
1: रउआ सुनी पूरा रिलीज टीम के सब के सुने।
0: तो चलिए
1: हमारा संगतिया द्वारा कैसा दिन भाई वो सुन।
0: अच्छा जी, तो गाना प्ले कर सुनत रहे रेडियो 90.4।
1: हाँ ठीक बा।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856557।
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468।
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: हेलो
9: जी, स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: जी नमस्ते मैम।
9: नमस्ते,
10: विकास कुमार हिमतापुर।
9: जी जी, क्या हाल चाल है विकास जी?
10: बढ़िया है जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
9: जी मेरा भी बढ़िया है।
10: अच्छा, तो बताइए जन्माष्टमी का। हेलो
9: जी,
10: और पूजा पाठ होता है ना जन्माष्टमी का, कृष्ण जी का? अच्छा,
9: अभी फास्टिंग है?
10: आज शाम को होगी ना पूजा।
9: जी जी, तो बोले आज अभी फास्टिंग है, आप भी व्रत रखे हैं?
10: नहीं, व्रत नहीं रखे हैं हम लोग खाने वाले आदमी है ना, व्रत रखने वाला नहीं।
9: लड़के भी लोग करते हैं लोग?
10: हाँ, लड़के भी करते हैं लोग।
9: तो आप बताइए, आपके घर में सब कोई ठीक है?
10: और सब बढ़िया है जी, सब कोई मस्त है एकदम। मेरे लड़का लड़की दोनों मस्त है, मम्मी पापा सब मस्त है, मेरी मैडम भी मस्त है, बस सब कोई मस्त है।
9: तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
10: आज की फरमाइश है, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, यही वाली सॉन्ग।
9: आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
10: सबसे पहले आपको, जितना रेडी रेमजूम सुनने वाले सबको
9: जी।
10: हाँ, आप भारती मैम बोल रही है ना?
9: नहीं,
10: मोनार्मा जी।
9: जी जी,
10: और ये भारती मैम, सोनी मैम, ये सब कैसे हैं?
9: सब कुछ
10: है। अच्छा, बीच में बात हुआ था तो भारती मैम से बात हुआ था।
9: अच्छा जी।
10: हाँ, एक दिन रक्षाबंधन के पहले भी बात हुआ था।
9: हुँ।
10: तो बोली कि आपसे काफी दिन हो गया आपके आवाज सुने हुए। हाँ, हम बोले कि आप ही नु कहाँ चले जाते हैं ना
9: जी?
10: हम उनसे बोले, भारती मैम से, आप ही नु कहाँ, मालूम न कहाँ चले जाते हैं?
9: हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, लोग कॉल नहीं कर रहे थे इसकी वजह से बोली होंगी।
10: अच्छा, नहीं आपका रिकॉर्डिंग चल रहा था ना बीच में
9: जी,
10: बहुत पहले 15-16 तारीख को, मैं बोल रहा हूँ 15-16 अगस्त को।
9: अच्छा।
10: उस टाइम तो आपका रिकॉर्डिंग चल रहा था ना?
9: जी।
10: और पंडाल वंडाल बन रहा है ना बंजारी मोड़ पे?
9: जी जी जगह बन रहे हैं।
10: अच्छा, हम लोग का तो दशहरा पूजा बैठा था नहीं है दिल्ली में, अब वही दिल्ली में अपना करते हैं, बस मेला वाला चले जाते हैं, थोड़ा बहुत जलेबी भी खाते हैं, बस रात में चले जाते हैं घूम करके। बहुत काफी दिन हो गया गोपालगंज का मेला देखे हुए।
9: जी जी, इस बार देख कर जाइए।
10: इस बार देख करके जाएंगे। चलिए, लिखा रहेगा तो होगा, मेला भेटाएगा। हम लोग का तो परदेश में घर है ना, हम लोग का बस सिर्फ नाम का घर है, लेकिन परदेश हम लोग का वही ओरिजिनल घर है, लड़की का ससुराल है घर। हम लोग जाते हैं तो थोड़ा बहुत घर से निकलते हैं तो थोड़ा बहुत बुझाता है, लेकिन लड़की लोग का विदाई होता है तो उन लोग का कितना बुझाता है, उसको ससुराल भी जाती है तो रोती है कितना। लेकिन आजकल की लड़कियां नहीं उतना रोती है ना। हाँ, कैसे कि उन लोग का मोबाइल वोबाइल सब दिया जाता है शादी विवाह में, बस जा करके वो इंस्टा वोस्टा में वीडियो बनाती रहती हो, बस उन लोग का मन लगते रहता है। चलिए मैडम, आपसे बात करके बहुत हमको बहुत अच्छा लगा।
9: मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा।
10: आज बहुत काफी दिन पे बात हुआ था आपसे। हाँ, बहुत काफी दिन। गाना गाना का तो फरमाइश दे दिए थे मैम।
9: जी जी, तो गाना प्ले करते हैं आपका।
10: अच्छा, चलिए ठीक है।
9: जी
10: ठीक है, ओके
9: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: नमस्ते
9: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.5।
0: विजय कुमार मारी
1: जी,
0: विजय कुमार मारी महाराष्ट्र वाला।
1: हेलो
0: जी, महाराष्ट्र वाला।
1: ओके, गाना कौन सा सुनना है आपको?
0: गाना सुना महाराष्ट्र साड़ी।
1: क्या साड़ी?
0: महाराष्ट्र की साड़ी, महाराष्ट्र की मराठी गाना है।
1: गा के बता सकते हैं?
0: कौन सा सुनो? महाराष्ट्री कौन सा गाना सुनाऊं? हेलो
1: जी, क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
0: नहीं नहीं नहीं,
1: तो गाने के बोल ही बता दीजिए दो लाइन।
0: गाने के बोलो
1: जी,
0: आपकी
1: गाना भी चाहते हैं? गाना
0: आपका
1: जी शाम को चलेगा 5 से 7 के बीच।
0: शाम को
1: जी 5 बजे से।
0: हाँ ओके ओके,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: ओके ओके।

0: के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11000। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
5: Now pick your phone up.
6: Hello?
5: Pick it up, pick it up.
6: Hello?
5: Now pick your phone up.
6: Hello?
7: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
8: Hello, hello, hello, hello.
9: To dosto, break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Main aap sabhi ko bata du, yadi aap sabhi is karyakram se judna chahte hain to pratyek sombar, budhvar aur shukrvar ko subah 11 baje se call karke apne gaane ki farmaish ko record kara sakte hain. Number hai 8029-94911. Ji haan, 8029-94911. To chaliye badhte hain aage aur lete hain agla call.
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: मैडम जी, हमको एक गाना सुनना था।
10: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
11: हमारा नाम रामा संसारी है
10: जी। और कहाँ से?
11: चिड़िया से बोल रहा हूँ, अभी मैं फिलहाल कश्मीर में हूँ।
10: अच्छा,
11: और मैडम जी उधर का मौसम कैसा हुआ?
10: अच्छा, मौसम तो ठीक है, हल्का धूप निकला हुआ है।
11: यहाँ पर भी सुबह में बहुत तेज बारिश हुआ था, अभी फिलहाल मौसम बना हुआ है।
10: तो नाश्ता वास्ता हो गया आपका?
11: हाँ, नाश्ता पानी तो हो गया है।
10: चलिए बढ़िया, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
11: हमारा फरमाइश है चल चमेली बाग में मेवा खिलाएंगे, और ये गाना आपको और जितने रेडियो रंजन सुनने वाले सोते हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
10: जी तो क्या आप ये 2 लाइन गा के बता सकते हैं? ये गाना आप 2 लाइन गा के बता सकते हैं?
11: जी नहीं,
10: तो फिर गाने की बोली बता दीजिए।
11: चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, वो भी फिल्म का गाना है ये।
10: जी जी, और ये गाना
11: जी बोलिए,
10: ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
11: जी हाँ, आपको और जितने सुनने वाले सुनता है सबको सुनाना चाहता हूँ।
10: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
11: थैंक यू
10: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
1: FM
0: में। वालेकुम अस्सलाम।
1: ठीक है
0: जी, बढ़िया है। अपना बताइए, आप कैसी हैं?
1: अभी अभी कुछ नहीं, बैठे हैं।
0: अच्छा, नाश्ता हो गया
1: आपका? हो गया आपका?
0: जी मेरा भी हो गया।
1: हमको गाना सुनना है
0: जी। नाम को बता दीजिए अपना।
1: अजमेरी खातू।
0: कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: कैथवलिया से।
0: अच्छा, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: जय विक्रांता का गाना।
0: कौन सा?
1: जय विक्रांता।
0: क्या आप तो लाइन गा के बता सकती हैं?
1: देखते ही मेरा दिल घबरा जाता है।
0: और ये गाना सुनाना भी चाहती हैं?
1: हाँ, सबसे पहले आपको
0: जी,
1: तब मेरे पापा जी को, तब मेरी मम्मी, सारे बुआ है, तीन गुलाब सा है, रबीना है, इफारा रब है, दादी है, उनको सब किसी को सुनाना है, सुनने वाली को भी सुनाना है।
0: तो घर में सबको ठीक है?
1: हाँ ठीक है। आप ठीक है ना?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ठीक है
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: ठीक है।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87-894-18-744।
6: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो।
8: हेलो
7: जी भारती जी, नमस्ते, हम नवसात मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से।
8: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी मैम, शिकायत है आप लिए कि मैं कभी भी मैसेज करते हैं मेरा गाना जल्दी नहीं बजाया जाता है, क्यों?
8: अब ये तो भारती जी बता सकती हैं।
7: आज विक्रमगंज में जितने भी रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं, सभी को गाना सुनाना चाहते हैं, वर्षा पानी वाला गाना बजाते।
8: आपकी आवाज कट रही है।
7: टिप टिप वर्षा पानी वाला बजा दीजिएगा गाना।
8: अच्छा, और गाना सुनवाना भी चाहते हैं?
7: हाँ, जो जितने विक्रमगंज काराकाट में जितने लोग हैं सभी को सुनाना चाहते हैं। नाम तो धरेंगे तो बहुत लोग हैं। आज बज जाएगा
8: जी, आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
7: आपके एरिया का मौसम कैसा है? अच्छा,
8: मौसम तो सुहाना बना हुआ है, हवा चल रहा है।
7: चलिए ठीक है मैम, बजा दीजिएगा।
8: ओके, तो फिर प्ले कर दें गाना आपका।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मनोरमा जी के लिए दिल से प्रणाम।
0: प्रणाम।
1: मैं दानेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
1: काम हो रहा है, शो सुन रहे थे।
0: अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप?
1: हम तो बिल्डर हैं, ऐसे मशीन भी चलाते हैं।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया।
1: पावर प्रेस चलाते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी की बात है।
1: क्या करें, रोटी के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा।
0: जी जी।
1: और सब अपना सुनाइए।
0: जी सब बढ़िया है आपकी दुआ से।
1: ये आज का टाइमिंग बढ़ गया।
0: क्या ना, इससे पहले भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो फिर मेरा चालू हो गया 12 से 12:30 एक बजे तक, क्योंकि कॉल बहुत कम आए थे।
1: अच्छा अच्छा, तब भी तो लग नहीं रहा था।
0: तो स्टार्टिंग में लोग बराबर करते हैं, लोग जैसे टाइमिंग खत्म होता है कॉल कर आना बंद हो जाता है। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: आज की फरमाइश क्या, करने के बाद तो दिमाग से ही उतर जाता है। चलिए ठीक है, दे रहा हूँ, यही बजा दीजिएगा। ये कर बालमा बसे परदेश तक ही।
0: ओके, वैसे तो अच्छा तो

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
4: नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते।
4: पिया तनी?
3: ना, नाम बता दिया अपन।
4: गणेश के बहन करिश्मा कुमारी।
3: जी जी, कैसन बानी?
4: ठीक बनी रहो, कैसा बनी?
3: हम भी ठीक बानी।
4: क्या होता है?
3: क्या हुई? कुछ ना, बस रहुआ से बात होता।
4: खाना वाना हो गया?
3: और
4: खाने के तो भूखा बानी सन।
3: अच्छा,
4: रहुआ ने की बुखार?
3: ना ना, अगर हम भूख जाए तो फिर दिक्कत हो जाए। तो ना भैया,
4: रहुआ तो कब रिकॉर्डिंग करे नी?
3: हम रिकॉर्डिंग तो करे नी, लेकिन वो टाइम रहुआ फोन ना करे नी।
4: अभी मतलब भारतीय दिया जाए सो पे तब रुआ आवे नी।
3: कभी कभी ऐसी होला, कैसे वो भी तो सो चलावल जरूरी बा ना। जी, घर में सबको ठीक बा?
4: हाँ, सब ठीक बा घर में।
3: जी जी, हमारे घर में भी सब लोग बढ़िया बा।
4: रघुआ तो नहीं आवत रहे, तो मेरा आवाज अच्छा लगे लगे।
3: अच्छा जी,
4: सबसे फर्स्ट भैया की अच्छा लगे लगे, कह लें की लवतियाला भारती दीदी से बोले थी, मनोरमा दीदी से।
3: हाँ,
4: हमको उठाओ तो नहीं फोन करते, उठाएब ना कह नहीं।
3: हाँ, वो 12 बजे वाला शो में करते रही। हाँ,
5: क्या मनोरमा दीदी?
3: जी बढ़िया बा, अपन बतावल जाओ।
5: बढ़िया,
3: कहाँ रह नहीं आजकल?
5: रोगा भुला कहाँ रहते?
3: अरे रोगा तो कॉल ही ना करे नी कभी।
5: हम कॉल ही ना, हमारे अकाउंट हो गई बा।
3: अच्छा, इससे पहले कहिया रहनी फोन?
5: हाँ, बात भाई भारतीय दीदी से। मनोरमा दीदी आ रहा है 12 बजे से 1 बजे रिकॉर्डिंग करेंगी। हाँ तो हम कहें ठीक बा, तो वहाँ से बात करे तो रहुआ से कहाँ से हो पाई।
4: वो तो कब आएबे ना करेंगे बोला कि भुला जाएंगे।
3: ना ना हम रहुआ लोग कहाँ भुलाएंगे, रहुआ लोग हमारा जब हम रिकॉर्ड करेंगे वो टाइम रहुआ लोग फोन ही ना करेंगे ना।
5: परिश्रमा के बतिया के मन कर लो रहुआ से।
3: चलिए बात हो गई ना, बहुत अच्छा लगे ला हमके रहुआ सबसे बात करके।
5: कौशिक आका करिश्मा के लगे ला
4: ना दीदी यहाँ के।
3: अच्छा दोनों जाने के है ना। हमके भी बहुत अच्छा लग रहा है सबसे बात करके।
5: सो मेरे को
3: ना सो में चल जाए तो फिर ये वाला काम की करी
5: काम के बाद
3: तो ये भी तो कॉल बनावल जरूरी बना क्या की शाम के बाजे
5: नहीं बात सही बात। कभी कभी बोल के बोल दे भाग जम करने कहा काम चलो
3: जानी बस थोड़े देर खातिर ही
5: जाके बोल बस सबके पूछे बताइए ना कर भारती दीदी कहनी की चल गए अपना काम में।
4: रहुआ कौन काम करने हुए
3: जी,
4: कौन काम करने हुए
5: दुख बा
3: जन भारती जी काम करे वो काम हम करेंगे। सबके अलग अलग काम बा।
4: अच्छा ठीक है बा।
3: आज के फरमाइश बता दी हो।
4: आज के फरमाइश बजा दी पवन सिंह के कौन गीत।
3: कौन सा इतना मेहनत से फोन लागल बात तो बता देती तो सही रही।
4: चलिए हाई बजा दी तनी देखल करी हमारा के कौन जी
3: ना तो हो जाई प्यारे बलम जी।
4: हाँ
3: ये गा के बता सकते नहीं हमके।
4: हाँ तनी देखल करी हमारा के कौन जी ना तो हो जाई प्यारे बलम जी।
3: बहुत अच्छा गावे नहीं लेकिन
5: सुनी ना डेडिकेट करते हैं सबसे पहले रोगा के।
3: अच्छा जी
5: भारती दीदी के,
4: सोनी
5: दीदी के, दिव्या दीदी के, आई स्पेशल में करिश्मा जी के,
4: स्पेशल में गणेश भैया के।
3: अच्छा ठीक बात तो फिर प्ले करते हैं रोगा सबके गाने।
5: पंकज सर के भी सुना दे, सोनू सर के भी।
3: जी जी सभी को ही सुनी।
4: ठीक बात
3: तो प्ले करते हैं गाना।
4: ठीक बात
3: जी सुनत रही सबके साथ। बाय सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
4: ठीक है।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: और बातें हो सकती हैं अभी मतलब ऑन एयर वाली?
0: जी ये तो ऑन एयर वाली नहीं है, ये तो है।
1: अच्छा नहीं, वो बीच चल रहे थे जैसे ऑन एयर होके फिर बातें करके गाने सुनना है तो।
0: जी बिल्कुल, तो अभी आप रिकॉर्डिंग करा दीजिए और शाम को सुन लीजिएगा।
1: मतलब जो अभी चल रहा है, अभी देखिए मैं प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, मैंने मैसेज भी अभी किया है मैसेज वाले नंबर पे।
0: जी जी,
1: लेकिन जैसे अभी बातें हुई और आपने गाने सुनाए तो अभी लाइव नहीं चल रहा है ये?
0: नहीं, ये जो मैं शो कर रही हूँ लाइव नहीं चलता है, अभी वो दूसरा चल रहा है, आप उसमें अभी कॉल करके जुड़ सकते हैं और अभी के अभी सॉन्ग सुन सकते हैं।
1: हाँ तो वही तो सोच रहे हैं, वो अलग नंबर है क्या?
0: जी जी, उसमें बताया जा रहा है, आप नोट करके कॉल कर सकते हैं।
1: अच्छा आप बता दोगे?
0: मुझे तो नहीं याद है, लेकिन उसमें आपको बताया था।
1: अगर बता देते तो, नहीं तो चलिए आपसे रिकॉर्डिंग करवाते हैं। शाम को कितने बजे आप सुनाओगे?
0: 5 बजे, 5 से 7 के बीच।
1: चलिए ठीक है,
0: तो नाम बता दीजिए अपना।
1: जी हाँ, मेरा तो भास्कर कुमार तेजस्वी है।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मुंगेर जमालपुर बिहार, वैसे मेरा घर है बट अभी हरियाणा सोनीपत में हूँ।
0: अच्छा जी, वैसे क्या करते हैं आप?
1: एक प्लांट है मारुति सुजुकी की, वहीं पे लगा हूँ।
0: चलिए बढ़िया
1: जी,
0: तो फिर आज की फरमाइश?
1: आज की फरमाइश में एक सॉन्ग सुना दीजिएगा मुझे आतिफ असलम की आवाज में, और गाने के बोल में बता रहा हूँ, गाने के बोल क्योंकि थोड़ा सा भूल चुका हूँ तो 2 मिनट। और पहले तो सुनाना चाहेंगे हम अपने कुछ मित्रों के, जब तक नाम ले लें। बरजू भाई हैं, उत्तम सोनी जी हैं, मुकेश जी हैं, रानी जी हैं, सबनम जी हैं, कामरान भाई हैं, दिलीप राम जी हैं, और सन्यासी रंजन बाबा हैं, श्री राम जी हैं, और भी जितने लाइव श्रोता हमें सुन रहे हैं उन सभी को ये सॉन्ग है कुछ इस तरह। मैं थोड़ा गुनगुना दूं, ज्यादा तो अभी पता नहीं है गाने के बोल। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों को भिगा दे, कुछ इस तरह से है। थोड़ा थोड़ा मुझे मतलब वो सुर नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत गाना है। अगर आपने सुना होगा तो।
0: जी बिल्कुल सुना
1: है। जी
0: तो प्ले करते हैं।
1: वैसे आपका नाम क्या हुआ?
0: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: जी मनोरमा जी, आरजे मनोरमा जी, थैंक यू सो मच कि मेरी वॉइस को रिकॉर्ड किया और आप सुनाने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरा गाना सुनाने के लिए आपको ऑलरेडी।
0: जी आपको भी रेडियो रिमझिम में रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच,
0: वेलकम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: 4-7

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6205-6212।
10: कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने। 48

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्यक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्यक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-1844।
5: आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66।
4: क्या कहा तुमने, मात्र ₹600 प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र ₹600 प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र ₹2,00,000 डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

0: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी समेत सभी प्रमुख नदियों में उफान से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पटना, भोजपुर, वैशाली, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण समेत उत्तर, मध्य और दक्षिण बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी साथ थे। बाद में मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। श्री चौधरी ने बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों के तटवर्ती और निचले इलाकों में पानी फैलने से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
1: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: बेगूसराय जिले के शामहो और तेघड़ा समेत 6 प्रखंडों के दियारा इलाकों की 5,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। शिक्षा विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के 71 विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों से संबद्ध किया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे। इधर भागलपुर के खरिक प्रखंड की राघोपुर पंचायत के 5 वार्डों में पानी फैलने से 5,000 की आबादी प्रभावित हुई है। वैशाली जिले के 6 अंचल बाढ़ से प्रभावित हैं। बक्सर में गंगा, कर्मनाशा, थोरा, धर्मावती और कंचन नदियों के बढ़ते जलस्तर से ब्रह्मपुर, सिमरी, बक्सर और चौसा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का संकट गंभीर हो गया है। सारण जिले के छपरा सदर प्रखंड की 5 पंचायतों में गंगा, सरयू, सोन और गंडक नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। सरयू का पानी छपरा शहर के कुछ हिस्सों में भी प्रवेश कर गया है। भोजपुर जिले की 40 ग्राम पंचायतें बाढ़ से घिरी हैं। मुंगेर में महाने नदी पर बरसंडा में बनाया गया डायवर्जन नदी के तेज बहाव में बह गया। वहीं बांका में ओढ़नी डैम की सड़क धस गई है। जिला मुख्यालयों से संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सूर्यप्रकाश उपाध्याय।
0: पश्चिम चंपारण के योगापट्टी और मधुबनी प्रखंड के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बीच मधुबनी प्रखंड के चिवरही और सिसई पंचायत बाढ़ और कटाव से बुरी तरह प्रभावित है। स्थानीय लोगों के अनुसार हर दिन लगभग 5 से 6 एकड़ जमीन नदी में विलीन हो रही है। इससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। इस बीच विधान पार्षद सौरभ कुमार ने स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को कटाव रोधी कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
0: इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए खगड़िया और कटिहार में बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 9 और STRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर में 5 और भोजपुर में 2 सामुदायिक रसोई घर संचालित किए जा रहे हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित जिलों में कुल 389 नावों का भी परिचालन किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावितों के बीच 30,735 पॉलिथीन सीट का भी वितरण किया गया है। वहीं प्रभावित परिवारों के बीच सूखे राशन का भी वितरण किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए लोगों से हेल्पलाइन नंबर 1070 पर संपर्क करने की सलाह दी है। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
0: भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ESO-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह देश के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
5: I am very happy to announce that GSLV.
6: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र के परिसर में बहुउद्देशीय सभागार का उद्घाटन किया। इस सभागार की क्षमता 1200 लोगों की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
7: AI का दौर है साथियों, आज AI के दौर में दुनिया से जो हम पीछे छूटे हैं, बिहार को लोग मानते हैं कि हम पीछे छूट गए। मैं यही आग्रह करूंगा हमारी युवा पीढ़ी से, AI के जमाने में हम इतना मेहनत करें कि देश के सबसे आगे बिहार खड़ा हो जाए, इसकी कल्पना करता है।
0: राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 10 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। साथ ही बिहार पुलिस सेवा के 3 पदाधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पूरन कुमार झा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के जिम्मे

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य भर के मठ मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पटना के इस्कॉन मंदिर में नाम संकीर्तन और भगवान श्री कृष्ण का 251 चांदी के कलशों से विशेष अभिषेक किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। इधर मीठापुर के गौरी मठ में देवकी गर्भ स्तुति और सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया है। रात्रि 12 बजे मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में कल श्री कृष्ण महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें दही हांडी प्रतियोगिता प्रमुख आकर्षण होगी। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जन्माष्टमी के प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश में 26 औद्योगिक परियोजनाओं में 505 करोड़ 27 लाख रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी ने इन परियोजनाओं के लिए 33 एकड़ से अधिक औद्योगिक भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि इन परियोजनाओं से लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। स्वीकृत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, लेदर गारमेंट्स, पशु आहार और सामान्य विनिर्माण शामिल हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया के रानीगंज में सबसे अधिक 51 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
2: दिनांक 5 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की बहुत संभावना है, जबकि उत्तर मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: औरंगाबाद और शेखपुरा में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। औरंगाबाद में आयोजित कार्यशाला में पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और प्रदेश मंत्री संजय कुमार मुन्ना ने अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। बिहार ओलंपिक संघ ने 5 से 12 सितम्बर तक प्रस्तावित बिहार स्टेट गेम्स 2026 को तकनीकी और अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। संघ के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता अब सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच आयोजित होने की संभावना है। नाबालिग बच्चों से कथित दुष्कर्म के आरोपित शिक्षक अरविंद कुमार को बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पहले ही आरोपित प्रधानाध्यापक इमाम अली अंसारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। खगड़िया जिले के

भरतखंड थाना क्षेत्र के खजरैथा नया टोला में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में दो युवकों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र के तेलनी गांव में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 318 किलो गांजा के साथ तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया। कैमूर में उत्पाद विभाग के हाजत से एक शराब तस्कर फरार हो गया। इस मामले में होमगार्ड के तीन जवानों पर FIR दर्ज कर तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग के नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से कल जिला स्कूल सहरसा के परिसर में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
0: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
0: श्री कृष्णा सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी।
8: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं।
7: आज की कड़ी बहुत खास है, क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस, यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण, ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
7: सच कहूं से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है?
8: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
7: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
8: बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
7: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
8: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
7: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम साधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती है क्या?
8: यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
7: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्यों अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
8: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
7: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
8: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
7: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
8: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है। बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
7: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
8: हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गांव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी। पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैर बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है और उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
7: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
8: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
7: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
8: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
7: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
8: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेशों से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
7: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
8: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो यह कमी और बढ़ जाती है।
7: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
8: बिल्कुल सही समझा आपने। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत जैसे कि फल, केला, अमरूद, संतरा, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
7: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
8: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात और है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वह बीमारी का कारण भी बन सकता है।
7: साथियों, आज की बातचीत से तो एक बात साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती है। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
8: श्रोताओं, याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
7: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में, सेहत सही लाभ कई में, एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
9: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में विधि अधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। अधिक जानकारी तथा आवेदन पत्र के प्रारूप के लिए देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट www.ncm.nic.in। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर आमंत्रित कर रहा है आवेदन इन पदों को भरने के लिए। सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड हेल्थ, प्रोजेक्ट एसोसिएट चाइल्ड हेल्थ और प्रोजेक्ट असिस्टेंट चाइल्ड हेल्थ, तीनों पदों पर एक एक रिक्ति उपलब्ध है। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखने के लिए जा सकते हैं इस वेबसाइट पर www.nhsrcindia.org। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ में सहायक प्रोफेसर के 13 पदों की रिक्तियां उपलब्ध हैं। भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ की वेबसाइट www.pgimer.edu.in। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास आमंत्रित कर रहा है वरिष्ठ उपाध्यक्ष AIF प्रकोष्ठ के 2 पदों को भरने के लिए आवेदन। पात्रता मानदंड, चयन की प्रक्रिया, आवेदन प्रस्तुत करने तथा नियम और शर्तों सहित अन्य निर्देशों के लिए देखिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की वेबसाइट www.npstrust.org.in। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में इन पदों को भरा जाना है उपनिदेशक प्रशासन, सहायक निदेशक प्रशासन, कंटेंट प्रबंधक तथा निजी सचिव। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट cara.wcd.gov.in। केंद्रीय सतर्कता आयोग आमंत्रित कर रहा है निजी सचिव के 1 पद के लिए आवेदन। 3 रिक्तियां उपलब्ध हैं। पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.cvc.gov.in। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत श्री गुरु गोविंद सिंह वाणिज्य महाविद्यालय आमंत्रित कर रहा है प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन, विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य के तौर पर अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी,
0: इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रावास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।

0: कहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
0: श्री कृष्णा और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी।

0: फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी,
2: इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62-62।
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दे श्री कृष्णा साड़ी को।
7: मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों

0: वहीं से गोपालगंज गई रनिया। घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट।
3: इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने

0: खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहां कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
7: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
8: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
7: And recovery efforts in the country.
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
10: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
11: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
12: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
13: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय, वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।
1: अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456651 या 9707-06-575।
6: आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है?
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिस कर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिस कर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। गंडक नदी में शव मिलने की सूचना पर चलाया गया सर्च अभियान। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 30 वर्ष कैद की हुई सजा। और रंगदारी के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धूमधाम से पूरे जिले में मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 9वीं एवं 11वीं की रिक्त सीटों पर लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र एवं इच्छुक विद्यार्थी 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए लेटरल एंट्री सेलेक्शन टेस्ट का आयोजन शनिवार 10 अप्रैल 2027 को किया जाएगा। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन पत्र भरते समय विद्यार्थियों को सभी आवश्यक विवरण सावधानी पूर्वक दर्ज करने होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 3 दिनों के लिए करेक्शन विंडो उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान निर्धारित विवरणों में आवश्यक सुधार किया जा सकेगा। करेक्शन विंडो बंद होने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। अभिभावकों से अपील की गई कि पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के बाद समय पर ऑनलाइन आवेदन पूरा करें ताकि अंतिम समय में तकनीकी परेशानी से बचा जा सके। आज गंडक नदी में शव दिखने की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को मिली तो प्रशासन अलर्ट हुआ। बताया जा रहा है कि सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर के जन प्रतिनिधि के द्वारा गंडक नदी में नेपाल की ओर से बहकर मानव शव आने की सूचना दी गई थी। प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक टीम का गठन किया। टीम मौके पर पहुंची जिसमें सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शाहनवाज यूसुफ जई, अंचलाधिकारी रजत बर्णवाल, थाना प्रभारी जादवपुर, आपदा मित्र सुधीर कुमार, SDRF के 3 सदस्य और मेडिकल टीम के लोग शामिल थे। टीम ने जन प्रतिनिधियों के साथ नाव के माध्यम से गंडक नदी के दियारा क्षेत्र में पहुंचकर सूचना के आधार पर व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान मौके पर किसी भी मानव शव की बरामदगी नहीं हुई। हालांकि कुछ मृत मछलियों एवं पशुओं के शव देखे गए। टीम ने आसपास के क्षेत्रों में भी सघन जांच की। जांच में मानव शव बरामद नहीं हुआ। जिला प्रशासन ने नेपाल से आई बाढ़ के कारण बहकर आने वाली मृत मछलियों को देखते हुए आम लोगों से विशेषकर सावधानी बरतने की अपील की है। बताया जा रहा है कि गंडक नदी के अपवाह क्षेत्र में नाव का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। आमजन नदी में नाव का परिचालन नहीं करें, साथ ही नदी में बहकर आने वाले अथवा मृत मछलियों का सेवन नहीं करें। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार निगरानी बनाकर काम कर रहा है। आम जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। आज गोपालगंज में माननीय न्यायालय ADJ 6 की अदालत में पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अभिषेक कुमार पिता जितेंद्र शाह ग्राम पुरानी किला रोड हथुआ का निवासी है। इसके साथ अखिल शर्मा पिता उमेश शर्मा ग्राम सिंघा टोला पंडितपुरा थाना मीरगंज का रहने वाला है। इन दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है और इन्हें 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई और प्रत्येक आरोपी को 50,000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बताया जा रहा है कि गोपालगंज पुलिस के द्वारा किए गए प्रभावी अनुसंधान और न्यायालय में की गई सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर दंड की सजा मिली है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि वादी को दोनों अभियुक्तों ने बहला फुसला कर अगवा किया था और बलात्कार किया था। इसी मामले में 2022 में दोनों को गिरफ्तार कर इन पर केस दर्ज किया गया था और तभी से दोनों पक्षों की सुनवाई की जा रही थी और दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई। रंगदारी के मामले में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के राम बालक गिरी पिता सीताराम गिरी साकिन बड़का गांव थाना मीरगंज को मोबाइल फोन के माध्यम से रंगदारी मांगी गई थी। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। इस मामले में पुलिस ने आवश्यक जांच पड़ताल करते हुए अभियुक्त श्याम कुमार यादव को गिरफ्तार किया, जो मीरगंज के कालो पट्टी निवासी बाबूलाल यादव का पुत्र है। आरोपी के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। साथ ही उसके निशानदेही पर और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त रंजीत कुमार राय पिता वासुदेव राय साकिन भैरव पट्टी थाना मीरगंज को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त श्याम कुमार यादव से विधिवत पूछताछ में उसने बताया कि वह एक जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन जमीन का रेट राम बालक गिरी के द्वारा बढ़ा दिया गया था। इसी बात को लेकर राम बालक गिरी को उलझाने के उद्देश्य से स्वयं को विशाल सिंह का आदमी बताते हुए 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। अब इस मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इन पर विधिक कार्रवाई कर रही है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के दंगसी गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र बुरी तरह से जख्मी हो गए। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पिता की मौत हो गई। पुत्र की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक सिवान जिला के जामो थाना क्षेत्र के खुशहाल डुमरी गांव के रहने वाले दीनानाथ महतो हैं, जो अपने पुत्र के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और इनके पुत्र का इलाज चल रहा है। घटना के बाद से ही परिजनों में शोक व्याप्त है। आज पूरे जिले में धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। जगह जगह लोग पूरे उत्साह और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। अपने अपने तरीके से भक्त भगवान श्री कृष्ण का नमन और पूजन कर रहे हैं। साथ ही कई जगहों पर मटका तोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। माझा के लंगटू हाता में भी दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां बढ़ चढ़कर युवाओं ने दही हांडी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा भी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में भक्तों ने अपने अपने स्तर से दही हांडी कार्यक्रम का भी आयोजन किया। पूरे उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को भक्त मना रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बरौली थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। लंबित कांडों, फरार अभियुक्तों और वारंट तथा कुर्की और शराबबंदी की कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने अपराध नियंत्रण और अवैध कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी, अभिलेखों के बेहतर संधारण और थाना परिसर की साफ सफाई को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए। 18 लीटर देशी शराब के साथ कटिया थाना की पुलिस ने अभियुक्त अमेरिका चौहान को गिरफ्तार किया, जो रामायण चौहान का पुत्र है और रूपी बगही का रहने वाला है। यह उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस ने इसे पकड़ लिया। अब इसे गिरफ्तार करने के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। शहर के कमला राय कॉलेज रोड में एक निजी हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत महिला के कुल्हे का ऑपरेशन करने के लिए निजी हॉस्पिटल में परिजन भर्ती किए थे और यहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजन हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। मामले की जांच की जा रही है। मृत महिला सिवान के कबीरपुर गाँव के संजय गुप्ता की 54 वर्षीय पत्नी, जो पूर्व BDC सदस्य रही हैं, तारा देवी बताई जा रही हैं। मुचका गांव थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसमें एक पक्ष से प्राथमिकी अभियुक्त मुकेश शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो वर्मा शाह का पुत्र है और मथैली खास थाना मुचका गांव का निवासी है। तो वहीं इसी मामले में दूसरे पक्ष से आरोपी सुधीर शाह और लाल बाबू शाह, ये दोनों सगे भाई है और काशी शाह के पुत्र है, मथैली खास थाना मुचका गांव के ही निवासी है। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। भोरे थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में प्राथमिकी अभियुक्त सुमित कुमार पिता नरेंद्र यादव साकिन बंतरिया धूर थाना भोरे को गिरफ्तार किया गया। तो वही मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ के बाद विधिवत आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही इस मामले में 2 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी आवश्यक पूछताछ की जा रही है। इधर भोरे थाना क्षेत्र से पुलिस ने 188 लीटर देशी शराब के साथ एक कार को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भोरे थाना क्षेत्र के ग्राम पांडे खजुराहा के पास छापेमारी की। इस दौरान एक गाड़ी को पकड़ा गया। कार को रोककर जब विधिवत तलाशी ली गई तो कार में सवार तस्कर वाहन से उतरकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर से 188 लीटर देशी शराब मिली, जिसे पुलिस ने कार के साथ जब्त किया है। वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध अब कांड दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र में NH 27 पर माधोमठ गांव के पास छापेमारी करते हुए उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहन यादव को शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसके भी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भोरे के भिंगारी जाने वाली सड़क पर छापेमारी करते हुए दो शराब तस्करों को 18 लीटर से अधिक शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी वीरेंद्र कुमार प्रजापति है तो दूसरा आरोपी ज्योतिष कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों विजयपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने विशंभरपुर थाना क्षेत्र के काला मटिहिनिया में छापेमारी करते हुए चार मोटरसाइकिल को जब्त किया है। साथ ही 243 लीटर से अधिक देशी शराब पकड़ी गई है। इसमें किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सभी तस्कर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल को जब्त कर अज्ञात तस्करों पर मामला दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हुई मारपीट की घटनाओं में 3 लोग घायल हैं। घायलों में मीरा टोला गांव की चंदा देवी, यादवपुर गांव की सुमन कुमारी एवं कुंदन कुमार का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एक अन्य समाचार के अनुसार पूरे प्रखंड पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
9: नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। गंडक नदी में शव मिलने की सूचना पर चलाया गया सर्च अभियान। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 30 वर्ष कैद की हुई सजा। और रंगदारी के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धूमधाम से पूरे जिले में मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार।
8: इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51।
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
10: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दे श्री कृष्णा साड़ी।
12: में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहाँ आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभव
12: अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
16: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
17: यहाँ पर हर्निया अपेंडिस वंध्याकरण प्रोस्टेट पीत की थैली किडनी की पथरी पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
18: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
15: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498।
19: और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
20: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86-034-648-652।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग मस्त हैं ना। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रेम 94.4 FM पे थोड़ी लेट हो गई है आप सभी के बीच उपस्थित होने में, और क्या ही करें, कार्य जो है एक पूरा करने के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की अनुमति मिलती है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। ध्यान रखना कि जब भी गाने के फरमाइश करना है तो आप तो जानते ही हैं कि पुराने गाने के फरमाइश करना है। यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले गाने के फरमाइशों के साथ। और इस मैसेज को किए हुए हैं बुलेट चौधरी जी बढ़िया थाना 3 फेड़िया से, और गाना सुनना है तो बिल्कुल आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू पहले सभी श्रोताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत राधे कृष्ण के तरफ से शुभ कामनाएं। आज मैडम जी को एक मेरे माध्यम से सॉन्ग कृष्णा जी का सुना दे। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में आप दोनों का, लवली गुप्ता एंड वीरेंद्र गुप्ता के करियर अक्सोल नेपाल बॉर्डर से। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय मैं कमलेश जी बिले सभ्या फील्ड गोपालगंज से, और मेरे तरफ से पूरे लिसनर को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रेडियो एमछिम परिवार के तरफ से भी आप सभी श्रोतागण को और हमारे विज्ञापनदातागण को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। हमेशा उनकी जीवन में खुशियाँ आए यही कामना करता है रेडियो रमछिम परिवार। और आगे बढ़ते हैं, हम कार्यक्रम की आगाज करते हैं और पहले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं हम। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, अलका याग्निक एंड उदित नारायण जी की आवाज़ में।

94.4 FM पे इस प्यारे से शॉन्ग को सुन रहे हैं आप सब और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यदि आप भी शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है छोटा सा, जिसमें अपना नाम, गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं, ये सारी बातें बतानी है और कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। लवली गुप्ता एंड वीरेंद्र गुप्ता, गाने की फरमाइश, बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। स्वर लता जी का डेडिकेट

सभी हमारे श्रोताओं को जय श्री कृष्ण। तो चलिए आपके गाने हम प्ले करेंगे और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो भाईजान, सलाम अलैकुम, समीर सागर चौराव से और सॉन्ग सुनना है, वो लड़की बहुत याद आती है। ओहो, चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कमलेश जी की तरफ से, नाइस सॉन्ग, बिल्कुल नाइस सॉन्ग। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भैया नमस्ते, हम सिद्धार्थ बरौली से और मेरे तरफ से रेडियो रिमझिम से जुड़े सभी श्रोता दोस्तों को कृष्ण जन्माष्टमी का ढेर सारा बधाई। भैया गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे इस प्यारे से सॉन्ग को।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ
4: यूफोरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहाना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
6: परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम झेम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और लिखा गया है कि चलिए सोनू बाबू, शुक्रिया राधे कृष्ण, आपके जीवन में सदा खुशियों की बांसुरी बजाते रहे। एक बार फिर से स्पेशल में शुभकामनाएं आप लगाए थे रिमझिम परिवार को, हैप्पी जन्माष्टमी लवली गुप्ता एंड वीरेंद्र गुप्ता भैया की तरफ से पहुंचा हुआ है। चलिए आपको भी, पूरे परिवार को, रेडियो रिमझिम परिवार की तरफ से। साथ ही साथ जो भी श्रोतागण अभी कार्यक्रम से बने हुए हैं और उन सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है आजाद अंसारी और मैं मोहनपुरा से जुड़ चुका हूं। और क्या हाल है? तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका स्वागत इस कार्यक्रम में गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे किए हुए हैं। शमीर सागर चौराव से और गाने का बोल देते हैं वो लड़की बहुत याद आती है। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे।

कमल के शाम रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं हम सभी। और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि सर प्रणाम, अंकुश कुमार सर, मुझे गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे पहुँचाए हुए हैं सिद्धार्थ जी बरौली से, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे जब तक जिएंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।

4FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, लिखा गया है कि शुक्रिया भाईजान सॉन्ग प्ले करने के लिए। और इस मैसेज को पहुँचाए हुए हैं समीर सागर जी, और चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो भाई कैसे हैं, सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक हैं, सुपर गाना चल रही है भाई। सविता चौहान भोज छपरा से मैसेज करती हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत बढ़िया, ये आपके कसम है या कथन। अब फरमाए गए गाने के फरमाइश करने वाले श्रोतागण ही बताएंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अर्जुन कुशवाहा श्रिस्या सासा मूसा से अब लौट चले, अब लौट चले गाने के फरमाइश करते हैं। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। अर्जुन जी थोड़ा सा सब्र करें, आपकी मैसेज हमारे पास दोनों पहुंची है और गाने के फरमाइश पूरी करने की कोशिश है। आगे बढ़ते हैं और आगे गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे गाने का बोल दिया गया है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने का। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी। अंकुश जी आप भी जाकर अपने गानों के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि आप दोनों की बात कोई मानेगा, ये चुपचाप होम डिलीवरी मंगा कर पिए और किसी से दुख ना सुनाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, और बात सही है, और बिहार में तो बंद है तो ये तो कानूनी अपराध में चला जाएगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि अर्जुन कुशवाहा त्रिशिया से, तो बिल्कुल थोड़ा सा सब्र करें, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर कैसे हैं, मेरा नाम है श्वेता और गोपालगंज से हूं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने की फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश तो है लेकिन समय की कमी है, आज पूरा नहीं हो पाएगी और आपने थोड़ी लेट कर दी है। आगे मैसेज कई हमारे पास पहले से भी पहुंचे हुए, तो उनकी फरमाइश प्ले करने करते करते गाने की समाप्ति के तक समय भी हमारा समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे आगे कई गाने हैं, तो चलिए अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे अगले गाने के फरमाइश किए हुए हैं आज़ाद अंसारी जी, और गाने का बोल दिए हुए हैं दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ये गाना सुनना है और सुनाना है आपको और सभी सुनने वाले को, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं और आगे मैसेज भी कमेंट्स पहुंचे हुए कमाल के और लिखा गया है कि इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जब भी किसी से दिल लगाए तो हजार बार सोच समझ कर दिल लगाए, नहीं तो यही गीत सादा गाते रहिएगा भाई। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्सौल नेपाल बॉर्डर से, बात सही है और जो भी कार्य करे थोड़ा सोच समझ कर करें। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोना के साइकिल चांदी के पहिया, ए सोनू बाबू तू हमरा से मिलवा कहिया। बिल्कुल मुलाकात तो होगी 5 जनवरी को और स्थापना दिवस के दिन जब कार्यक्रम होगी तो बिल्कुल मुलाकात होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भाई मेरा तो आज तो नहीं, आगे बढ़ेंगे और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे। और अगले गाने के फरमाइश हमारे पास त्रिशिया से पहुंचा हुआ है अर्जुन कुशवाहा जी के तरफ से और आ अब लौट चले का टाइटल ट्रैक। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सब अंतिम गाने के साथ इंजॉय करें, जो भी सुरतागढ़ छूट गए हैं सप्ताह का आज अंतिम दिन, श्वास के लिए बस इतना ही। सुनते रहे रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतर कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल।

0: pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का. तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911. जी हाँ, 8029494911. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश.
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में. नाम बता दीजिए अपना.
4: आप भारती बोल रहे हैं ना?
5: नहीं,
4: आपका सब तो फोन में बात ही नहीं होता है ना. मैं गोपाल बोल रहा हूँ बंगाल से.
5: जी जी, कैसे?
4: हम तो बहुत अच्छे हैं. लेकिन आपका बिहार का हालचाल कैसा है बोलिए. वो जो नेपाल का जो पानी बह रहा है ना, बोलते जो गोपालगंज में, हम कल मोबाइल में देखे वीडियो, बड़ा बड़ा मछली का सच है क्या?
5: जी, अभी तो गोपालगंज में प्रवेश नहीं किया है.
4: वो जो मोबाइल देख रहा है नदी में जो बह गया ना.
5: जी जी,
4: वो बता रहा था, हम देखे मोबाइल में वीडियो.
5: जी जी, गोपालगंज के आसपास के एरिया में आया हुआ.
4: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका हुआ पर तो ठीक ही है ना सब, हालचाल ठीक है ना
5: यहाँ पे सब?
4: आप कैसे हैं?
5: जी मैं भी बढ़िया हूँ.
4: और सोनी जी?
5: सोनी जी भी अच्छी हैं.
4: और मैं तो व्हाट्सएप कॉल में करती हूँ, व्हाट्सएप जो मैसेज देती हूँ आपको. तो आप तो मेरा तो गाना नहीं सुनाते हैं कई दिन से, मैं 3 हफ्ता हो गया. तो हाँ, आज तो ये 5 बजे का प्रोग्राम है ना ये तो.
5: जी
4: अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरा तो एक रिक्वेस्ट है, वो मुद्दत मूवी है ना, मुद्दत मिथुन और जया प्रदा का एक गाना है ना, मोहम्मद अजी और आशा भोसले का प्यार हमारा अमर रहेगा, वो गाना तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ. और ये गाना मैं डेडिकेट सबको करती हूँ, रिमझिम परिवार को और सारे लिसनर्स को. तो ये गाना मेरा सुना दीजिएगा.
5: जी
4: मैं रेडियो रिमझिम मोबाइल में ऐप के सुनती हूँ.
5: ऐप के माध्यम से कितने समय से सुनते आ रहे हैं?
4: देखिए दोपहर का प्रोग्राम मैं खाली सुनती हूँ, क्योंकि बोले तो मेरा जो मैं जब यहाँ से दुकान से जाती हूँ ना, उस टाइम लंच का टाइम होता है. घर में मैं आपका जो रिमझिम का प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम मैं चला देती हूँ. सबका घर में सभी सुनते हैं, अच्छे लगते हैं. और 5 बजे हम सुनते हैं, 5 बजे जरा वो दुकान में कस्टमर आ जाता है ना, उस टाइम में कभी सुना ही नहीं देता है. तो वो रात में मेरा जो कोई मेरा जो रिक्वेस्ट है, वो रात को 12 बजे से मैं सुन सकती हूँ.
5: जी जी,
4: रात 1:30 बजे तक आप देते हैं ना वो जो रिकॉर्डिंग, मैं रात में सुनती हूँ.
5: जी और
4: तो आपका रिमझिम ये प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं प्रोग्राम. जो गाना जो आप लोग सुनाते हैं और जो आपके सभी लिसनर जो गाना रिक्वेस्ट करते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं. और भोजपुरी भी गाना भी अच्छे लगते हैं, हम भोजपुरी भी गाना हम सुनते हैं, बहुत फिल्में हम देखे हैं भोजपुरी ऐसी. इसलिए गाना तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं. और गाना सुन के मैं बहुत सारे घर का काम करती हूँ, जानते हैं आप. गाना जब लगा देती हो घर में, कोई काम जो बड़ा हो छोटा हो मैं एकदम झटके में कर देती हूँ.
5: तो बहुत अच्छी की बात है.
4: आप बेंगल में नहीं आते क्या?
5: अभी तो नहीं गए हैं.
4: सिलीगुड़ी नहीं आते आप?
5: नहीं.
4: क्यों? सिलीगुड़ी आइए, घूम के जाइए.
5: जी जी बिल्कुल आएंगे.
4: दुर्गा पूजा में आइए. और मेरा ये जो नंबर है, हम लोग को कॉल कीजिएगा. मेरा जो मार्केट है ना, मेरा घर के सामने पाइनएप्पल मार्केट है. यहाँ का पाइनएप्पल आपको उधर सब जगह में जाते हैं. मेरा जो गाँव का नाम है विधाननगर, जगन्नाथपुर. नगर का पाइनएप्पल फेमस है. छठ पूजा में, छठ पूजा के एक हफ्ते के मैंने दिवाली के टाइम के समय से, ठीक है, छठ पूजा के 2 दिन आगे तक इतना सारा पाइनएप्पल यहाँ पर गाड़ी लोड होता है. जो बड़ा बड़ा गाड़ी 16 चक्का 18 चक्का गाड़ी बहुत सारे और यहाँ पर का खरीदार यहाँ पर आते हैं, यहाँ से बागान से खरीद करके जो यहाँ पर गद्दी है वो मार्केट से खरीद करके ले जाते हैं. बहुत सारे यहाँ पर का तो पाइनएप्पल फेमस है. तो आइए एक दिन हमारा गांव में घूम के जाइए.
5: बिल्कुल जरूर आएंगे.
4: तो एक दिन आइए यहाँ पर, मेरा हमको कॉल कीजिएगा, हम ठीक आपको रिसीव कर लूंगा. मेरा घर भी आप देख जाएगा, गरीब का घर है, देख जाएगा.
5: जी जरूर आएंगे और आपसे मिलेंगे.
4: अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू.
5: तो फिर प्ले करते हैं गाना.
4: अच्छा अच्छा ठीक है, आप प्ले कर दीजिएगा गाना, बहुत ही अच्छा रहेगा शायद. पानी अभी तो पानी हो रहा है बहुत, हाँ जोर से पानी अभी हो रहा है.
5: अच्छा,
4: अभी 1 महीने के बाद पानी हो रहा है. हाँ, यहाँ का पानी होता ही कैसे बोलिए तो झट से आते हैं चला जा रहा है. लेकिन आज जन्माष्टमी है ना, जन्माष्टमी तो पानी होती है.
5: जी तो फिर प्ले करते हैं गाना, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM.
4: थैंक यू.

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
3: hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम
7: 90.4 FM। रेडियो रिमझिम बहुत दिन से हम सुन रहे हैं।
6: अच्छा,
7: तो रेडियो रिमझिम पर हमको एक गाना सुनना है।
6: जी, गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए।
7: हमारा नाम है बद्री नारायण मुनि, ग्राम भोले, जामू बाजार, जिला सिवान। तो हमको गाना सुनाने मेहदी हसन की आवाज में गजल है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी यूपी।
6: क्या आप दुल्हन गा के?

0: है, मेहंदी रस्म का नहीं है ये है, बहुत अच्छा गजल है।
1: जी जी
0: हाँ,
1: ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
0: हम सुनाना चाहते हैं जितने दिन जिम हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो सबको सुनवाना चाहते हैं और आपको सुनवाना चाहते हैं, जितना दिन जिम परिवार है सबको सुनवाना चाहते हैं।
1: करते हैं गाना आपका,
0: हाथी प्ले कीजिए
1: जी।

0: हेलो,
1: वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: आपका भी स्वागत।
1: नाम बता दीजिए अपना।
0: रवीना खतून।
1: कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: पेथोलिया से।
1: अच्छा,
0: हमको गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
0: राजा हमको बनारस घुमाई।
1: क्या आप दो लाइन गा के बता सकती हैं मुझे?
0: नहीं आते।
1: दो लाइन ही गाना है आपको?
0: राजा हमको बनारस घुमाई।
1: ये गाना किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
0: हाँ, हसीना खातून का सुनना है, जोरा खातून का सुनना है और मेरी बुआ है।
1: वैसे क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं?
0: यस।
1: किस क्लास की पढ़ाई करती हैं?
0: फोर।
1: कैसी चल रही है पढ़ाई?
0: अच्छी चल रही है।
1: चलिए बढ़िया। तो फिर रवीना जी आपका गाना प्ले करते हैं।
0: कब सुनाइएगा?
1: शाम को चलेगा, 5 से 7 के बीच।
0: ठीक है, थैंक यू मैम।
1: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: अस्सलाम वालेकुम मैम।
6: वालेकुम अस्सलाम,
5: कैसे हैं
6: जी? बढ़िया है, अपना बताइए, आप कैसी हैं?
5: हम भी ठीक हैं।
6: तो क्या हो रहा है?
5: कुछ नहीं, आप ही को फोन लगा रहे थे।

0: अच्छा जी
1: हाँ
0: चलिए लग गया ना। वैसे नाम बता दीजिए ना।
1: खुशी पठानपट्टी से।
0: तो कैसी हैं आप?
1: ठीक है। मैंने गाना बजा दीजिएगा।
0: बता दीजिए।
1: ओ नहीं है पापा में तेरी मल्लिका, टुकड़ा हो तेरे दिल का, एक बार फिर

0: और ये गाने
1: वाला मजा आएगा।
0: जी जी बहुत अच्छा गाना है। और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहती हैं?
1: हाँ, आप लोग सुनेंगे और सब कोई सुनेगा।
0: खुशी जी प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो,
1: सुनो।
0: वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM। जी बढ़िया वाणी है, अपन बताएं।
1: ठीक
0: बढ़िया होता
1: है। बस ये फोन लगाएंगे, टाइम तक हो गया, आधा घंटा टाइम रहा ना।
0: खाना वाना हो गए?
1: फिर नाश्ता हो गया, 2 बजे से लंच हो, 2 बजे 10 बजे खाना, 2 बजे हो गई।
0: अच्छा
1: ठीक बने लोग?
0: जी जी
1: तुम्हें ठीक हुआ?
0: हाँ ठीक हुआ।
1: नाश्ता कल हो गया?
0: हाँ हाँ नाश्ता हो गया।
1: सबको
0: जी सबके बढ़िया बात। फिर आज की फरमाइश बता दी।
1: आज बता हिंदी गाना सुना दी।
0: बता दी
1: जितना मैं चाहूँ तुझे कोई खुशी देना चाहे।
0: और गाना सुनाए के भी
1: बात सुने, सब कोई

0: पहचान
1: तो नहीं
0: हाँ पहचान तो नहीं लेकिन फिर भी बता दी नाम
1: ऐसा बोलते तो शाम तो कितने
0: कल तो बड़ा नहीं मन सारी मिल रही
1: हाँ सुना ही हूँ
0: वही की रहूँगी हम
1: सही हाँ और आप कहाँ पर हैं अगर वस्तु के भाव पे हम पढ़ाएँगे
0: ना ना वही कम उसको चला दिए इस बारी बारी को
1: हाँ तो ये वस्तु चालू की अगर और आप भाती में
0: आज भाती में कर देंगे सही
1: चालू वस्तु
0: कल हम ही मतलब मैसेज में पढ़ती तो भाती जी कहते नहीं हमारे खातिर भी चलो भेज ले बनी मार के तो हम पढ़े
1: कौन बात है अगर फाइल चाहिए हुआ कोई कौन है दूर डाल के रख दे
0: एक ठीक बात पढ़े रहेंगे खाते रहेंगे
1: हाँ
0: अलग है
1: आप सही
0: इसमें तो गाना
1: ठीक बात अलग
0: जी सुनाते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो।
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैडम जी, नमस्कार।
7: नमस्कार
6: जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
7: जी जी, क्या हाल चाल है
6: मैडम जी? बरसात हो रही है हमारे इधर तो, और जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।
7: जी जी, आपको भी।
6: जी कौन, भारती मैम बोल रही? सोनी मैम
7: नहीं,
6: मनोरमा मैम बोल रही है।
7: जी जी
6: जी, नमस्कार मैडम जी। खाना वाना हो गया आपका?
7: और आपका हुआ?
6: नहीं, आज तो मेरा उपवास है तो रात को ही खुलेगा वो तो।
7: अच्छा जी
6: जी।
7: तो अभी क्या हो रहा था?
6: कुछ नहीं दीदी, सुन रहे हैं भजन भजन, और बरसात हो रही है घर पर ही है आज तो। जी,
7: लगातार बारिश हो रही है उधर।
6: जी, रात भर का पानी गिर रहा है और अभी भी पानी गिर रहा है। आज तो हम दुकान पे भी नहीं जा पाए, घर पर ही बैठे हैं।
7: अच्छा जी, इतना तेज बारिश हो रहा है?
6: जी, और बाजार में कोई पब्लिक भी नहीं आ रही है तो क्या करें? तो मैंने कहा आज बच्चों के साथ ही करें एंजॉय।
7: बिल्कुल
6: जी। तो पिक्चर का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और गाने के बोले यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
7: ओके, और डेडिकेट भी है?
6: जी मैडम जी, आपको है और हमारी सभी मैम है जितनी भी रेडियो में है उनको ये गाना डेडिकेट रहेगा। और गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझारी है, जितेंद्र ठाकुर जी है, इन सभी दोस्तों को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
7: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: कब बजेगा ये?
7: शाम को।
6: आज?
7: जी जी
6: जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत
7: जी। तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूमती रहती हो मुझे, तुम्हीं ने तो जादू डाला है मुझ पे।

0: वालेकुम
1: अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में। जी क्या हाल चल
0: बा?
1: हम यू भी ठीक बानी सर।
0: चलिए ठीक है, काम बा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: जब फोन टिंग टिंग बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
3: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है।

0: माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, तो आप सत्ता रेडियो 90.4 एफएम में?
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
2: विकास कुमार हंतापुर।
1: जी जी, क्या हाल चाल है विकास जी?
2: बढ़िया है जी, आप बताइए आप कैसे हो?
1: जी मेरा भी बढ़िया है।
2: अच्छा, तो बताइए जन्माष्टमी का। हेलो
1: जी,
2: और पूजा पाठ होता है ना जन्माष्टमी का, कृष्ण जी का? अच्छा,
1: आप भी फास्टिंग है?
2: आज शाम को होगी ना पूजा।
1: जी जी, तो बोले आज आप भी फास्टिंग है, आप भी व्रत रखे हैं?
2: नहीं व्रत नहीं रखे हैं हम लोग खाने वाले आदमी है ना, व्रत रखने वाला नहीं।
1: लड़के भी लोग करते हैं लोग?
2: हाँ लड़के भी करते हैं लोग।
1: तो आप बताइए आपके घर में सब कोई ठीक है?
2: और सब बढ़िया है जी, सब कोई मस्त है एकदम। मेरे लड़का लड़की दोनों मस्त है, मम्मी पापा सब मस्त है, मेरी मैडम भी मस्त है, बस सब कोई मस्त है।
1: तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
2: आज की फरमाइश, आज की फरमाइश है, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, यही वाली सॉन्ग।
1: आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
2: सबसे पहले आपको, जितना रेडी रेमजूम सुनने वाले सबको
1: जी।
2: हाँ, आप भारती मैम बोल रही है ना?
1: नहीं,
2: मोनार्मा जी।
1: जी जी,
2: और ये भारती भारती मैम, सोनी मैम, ये सब कैसे हैं?
1: सब
2: है। अच्छा, बीच में बात हुआ था तो भारती मैम से बात हुआ था।
1: अच्छा जी।
2: हाँ, एक दिन रक्षाबंधन के पहले भी बात हुआ था। तो बोली कि आपसे काफी दिन हो गया आपके आवाज सुने हुए। हाँ, हम बोले कि आप ही नु कहाँ चले जाते हैं ना
1: जी?
2: हम उनसे बोले भारती मैम से, आप ही नु कहाँ मालूम न कहाँ चले जाते हैं?
1: हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, लोग कॉल नहीं कर रहे थे इसकी वजह से बोली होंगी।
2: अच्छा, नहीं आपका रिकॉर्डिंग चल रहा था ना बीच में
1: जी,
2: बहुत पहले 15-16 तारीख को, मैं बोल रहा हूँ 15-16 अगस्त को।
1: अच्छा,
2: उस टाइम तो आपका रिकॉर्डिंग चल रहा था ना
1: जी जी।
2: और पंडाल उंडाल बन रहा है ना बंजारी मोड़ पे?
1: जी जी, इनका बन रहा है।
2: अच्छा, हम लोग का तो दशहरा पूजा बैठाता नहीं है दिल्ली में, अब वही दिल्ली में अपना करते हैं, बस मेला वाला चले जाते हैं, थोड़ा बहुत जलेबी भी खाते हैं, बस रात में चले जाते हैं घूम करके। बहुत काफी दिन हो गया गोपालगंज का मेला देखे हुए।
1: जी जी, इस बार देख कर जाइए।
2: इस बार देख करके जाएंगे, चलिए लिखा रहेगा तो होगा, मेला भेटाएगा। हम लोग का तो परदेश में घर है ना, हम लोग का बस सिर्फ नाम का घर है, लेकिन परदेश हम लोग का वही ओरिजिनल घर है, लड़की का ससुराल है घर। हम लोग जाते हैं तो थोड़ा बहुत घर से निकलते हैं तो थोड़ा बहुत बुझाता है, लेकिन लड़की लोग का विदाई होता है तो उन लोग का कितना बुझाता है, उसको ससुराल भी जाती है तो रोती है कितना। लेकिन आजकल की लड़कियां नहीं उतना रोती है ना। हाँ, कैसे कि उन लोग का मोबाइल वोबाइल सब दिया जाता है शादी विवाह में, बस जा करके वो इंस्टा वोस्टा में वीडियो बनाती रहती हो, बस उन लोग का मन लगते रहता है। चलिए मैडम, आपसे बात करके बहुत हमको बहुत अच्छा लगा।
1: मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा।
2: आज बहुत काफी दिन पे बात हुआ था आपसे
1: जी।
2: हाँ, बहुत काफी दिन। गाना गाना का तो फरमाइश दे दिए थे मैम
1: जी। जी, तो गाना प्ले करते हैं आपका।
2: अच्छा चलिए ठीक है
1: जी,
2: ठीक है ओके
1: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।
2: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: स्वागत है आपका रेडियो रिंगी 90.5।
1: कुमार माई जी, कुमार माई महाराष्ट्र हेलो
0: जी,
1: महाराष्ट्र से बोल
0: रहा। गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: गाना सुना महाराष्ट्र साड़ी।
0: क्या साड़ी?
1: महाराज की साड़ी, महाराज की मराठी गाना है।
0: गा के बता सकते हैं?
1: कौन सा सुनो? महाराजी माया साड़ी कौन सा गाना सुनाऊ? हेलो
0: जी, क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं,
0: तो गाने के बोल ही बता दीजिए दो लाइन।
1: गाने के बोलो
0: जी,
1: सुनते रहिए
0: सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone din de bajti hai to kehte hain hello.
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मैडम जी, हमको एक गाना सुनना था।
5: जी, गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
6: हमारा नाम रामा संसारी है
5: जी। और कहाँ से?
6: चिंचुड़िया से बोल रहा हूँ, अभी मैं फिलहाल कश्मीर में हूँ।
5: अच्छा,
6: और मैडम जी उधर का मौसम कैसा हुआ?
5: अच्छा, मौसम तो ठीक है, हल्का धूप निकला हुआ है।
6: यहाँ पर भी सुबह में बहुत तेज बारिश हुआ था, अभी फिलहाल मौसम बना हुआ है।
5: तो नाश्ता वास्ता हो गया आपका?
6: हाँ, नाश्ता पानी तो हो गया है।
5: चलिए बढ़िया, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
6: हमारा फरमाइश है चल चुनेली बाग में मेवा खिलाएंगे, और ये गाना आपको और जितने रेडियो रिंगिंग सुनने वाले सोते हैं सबको सुनाना चाहता हूँ
5: जी। तो क्या आप ये दो लाइन गा के बता सकते हैं? ये गाना आप दो लाइन गा के बता सकते हैं
6: जी? नहीं,
5: तो फिर गाने की बोली बता दीजिए।
6: चल चुनेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, वो भी फिल्म का गाना है ये।
5: जी जी, और ये गाना
6: जी बोलिए,
5: ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
6: जी हाँ, आपको और जितने रेडियो रिंगिंग सुनने वाले सोते हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
5: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: थैंक यू
5: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम।
1: ठीक है
0: जी, बढ़िया है। अपना बताइए, आप कैसी हैं?
1: अभी कुछ नहीं, बैठे हैं।
0: अच्छा, नाश्ता हो गया?
1: हाँ, हो गया। आपका?
0: जी मेरा भी हो गया।
1: हमको गाना सुनना है
0: जी। नाम तो बता दीजिए अपना।
1: अजमेरी खातू।
0: कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: कैथवलिया से।
0: अच्छा, फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: जय विक्रांता का गाना।
0: कौन सा?
1: जय विक्रांता।
0: क्या आप तो लाइन गा के बता सकती हैं?
1: देखते ही मेरा दिल घबरा जाता है।
0: और ये गाना आप सुनाना भी चाहती हैं?
1: हाँ, सबसे पहले आपको
0: जी,
1: तब मेरे पापा जी को, तब मेरी मम्मी, तारो बुआ है, फिर गुलाब सा है, रबीना है, इरफान आलम है, दादी है, उनको सब किसी को सुनाना है, सुनने वाली को भी सुनाना है।
0: तो आपके घर में सब कोई ठीक है?
1: हाँ ठीक है। आप ठीक है ना?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ठीक है
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: ठीक है।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: हेलो
6: जी, भारती जी नमस्ते। हम नवसात मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से।
7: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैम, शिकायत है आपके लिए कि मैं कभी भी मैसेज करते हैं यार बॉस के चुट में मेरा गाना जल्दी नहीं बजाया जाता है, क्यों?
7: अब ये तो भारती जी बता सकती हैं।
6: आज विक्रमगंज में जितने भी रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी को गाना सुनाना चाहते हैं, वर्षा पानी वाला गाना बजाते।
7: आपकी आवाज कट रही है।
6: टिप टिप वर्षा पानी वाला बजा दीजिएगा गाना।
7: अच्छा, और गाना सुनवाना भी चाहते हैं?
6: हाँ, जो जितने विक्रमगंज काराकाट में जितने लोग हैं सभी को सुनाना चाहते हैं। नाम तो धरेंगे तो बहुत लोग हैं। आज बच जाएगा
7: जी? आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
6: आपके एरिया का मौसम कैसा है?
7: मौसम तो सुहाना बना हुआ है, हवा चल रहा है।
6: चलिए ठीक है मैम, बजा दीजिएगा।
7: ओके, तो फिर प्ले कर दें गाना आपका।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मनोरमा जी के लिए दिल से प्रणाम।
0: प्रणाम।
1: मैं दानेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया। तो क्या हो रहा था अभी?
1: काम हो रहा है, शो सुन रहे थे।
0: अच्छा, वैसे क्या करते हैं आप?
1: हम तो बिल्डर हैं, ऐसे मशीन भी चलाते हैं।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया।
1: पावर प्रेस चलाते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी की बात है।
1: क्या करें, रोटी के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा।
0: जी जी।
1: और सब अपना सुनाइए।
0: जी सब बढ़िया है आपकी दुआ से।
1: ये आप आज का टाइमिंग बढ़ गया।
0: क्या ना, इससे पहले भारती जी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो फिर मेरा चालू हो गया 12 से 12:30 एक बजे तक, क्योंकि कॉल बहुत कम आए थे।
1: अच्छा अच्छा, तब भी तो लग नहीं रहा था।
0: तो स्टार्टिंग में लोग बराबर करते हैं, लोग जैसे टाइमिंग खत्म होता है कॉल कर आना बंद हो जाता है। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: आज की फरमाइश क्या, करने के बाद तो दिमाग से ही उतर जाता है। चलिए ठीक है, दे रहा हूँ, यही बजा दीजिएगा। ये कर बालमा बसे परदेश तक ही।
0: ओके, वैसे तो अच्छा तो गा रहे हैं आप।
1: तो फिर से गाएंगे।
0: तो गाइए।
1: ये कर

0: ठीक है यही सुना दीजिए, दिमाग से उतर गया आज।
1: कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हैं।
0: डिप्रेशन में आ गया।
1: अच्छा जी,
0: क्या करे, चलिए फिर जो भी हो काट छाट के बजा दीजिएगा।
1: जी जी बिल्कुल, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: प्ले कीजिए
1: जी। रेडियो रिज्यूम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते।
0: नहीं
1: ना, नाम बता दिया अपन।
0: गणेश के बहन करिश्मा कुमारी। ठीक
1: जी, कैसन बानी?
0: बनी रहो? कैसा बनी?
1: हम भी ठीक बानी।
0: क्या होता है? खाना
1: का हुई कुछ ना, बस रघुआ से बात होता।
0: वाना
1: और
0: खानी के तो भूखा बनी सन
1: राहुल। अच्छा
0: ने की बुखार।
1: ना ना, अगर हम भूख जाए तो फिर जी दिक्कत हो जाए।
0: हाँ
1: तो ना भैया,
0: रघु तो कब रिकॉर्डिंग करे नहीं है ना।
1: हम रिकॉर्डिंग तो करे नहीं, लेकिन वो टाइम रघुआ फोन ना करे नहीं।
0: अभी मतलब भारतीय दिया जाए सो पे तब रुआ आवे नहीं।
1: कभी कभी ऐसे ही होला। कैसे, वो भी तो सो चलावल जरूरी बा ना।
0: हाँ
1: जी, घर में सब कोई ठीक बा?
0: हाँ सब ठीक रहुआ घर में।
1: जी, हमारे घर में भी सब लोग बढ़िया बा।
0: रघुआ तो नहीं आवत रहे तो मेरा आवाज अच्छा लगे लगे।
1: अच्छा जी,
0: सबसे फर्स्ट भैया के अच्छा लगे लगे कहलन की लवतिया ला भारती दीदी से मले थी मनोरमा दीदी से
1: हाँ।
0: हम उठाओ थे फोन न करते हैं उठाए ना कहे नहीं लो।
1: कहाँ, वो 12 बजे वाला शो में करत रही हूँ।
0: हाँ क्या हाल है मनोरमा दीदी?
1: जी बढ़िया बा, अपन बतावल जाओ,
0: बढ़िया।
1: कहाँ रहा था नहीं आजकल?
0: भुलाए थे कहने कहाँ रहते हैं रोगा।
1: अरे रोगा तो कॉले ना करे नहीं कभी।
0: हम पढ़े ना हमारे अकाउंटी हो गई बा।
1: अच्छा, इससे पहले कैले रनिया फोन?
0: हाँ बात भाई भारती दीदी से तो कहते नहीं हुआ कि मनोरमा दीदी आ रहे 12 बजे से 1 बजे रिकॉर्डिंग करेंगी।
1: हाँ,
0: हाँ तो हम कहें ठीक बा तो वहां से बात करो तो रघुआ से कहाँ से होता है।
1: ना ना, हम रोग लो कितना भूला नहीं रोग लो। हमारा जब हम रिकॉर्ड करेंगे वो टाइम रोग लो फोने ना करे नहीं ना।
0: परिश्मा के बतिया के मन कर लो रघुआ से। हाँ
1: चलिए, बात हो गई ना, बहुत अच्छा लगेला हमके रोग सबसे बात करके।
0: तो करिश्मा के लगेगा
1: ना दीदी यहाँ के। अच्छा, दोनों जाने के है ना।
0: हाँ
1: हमके भी बहुत अच्छा लग रहा है रघुआ सबसे बात करके। ना,
0: सो मेरे को ना जनका
1: शो में चल जाए तो फिर ये वाला काम की करी
0: इकानवे के बाद।
1: तो ये भी तो कॉल बनावल जरूरी बना, कहे कि शाम के
0: हाँ
1: बाजेगा।
0: नहीं तो बात सही बात कभी कल बोल के बोल देना ओकर भाग जन कने कहा दिनो बोलता काम में चल गए।
1: जाने बस थोड़े देर खातिर ही।
0: हाँ जाके अपनी बोल देनी बस आ बाकी सब हाँ थोड़ा सब के पूछे लगे मैं कहती रहता था बताइए ना कोई नहीं भारती दीदी कोई नहीं कि मैं चल गए नहीं अपना काम में।
1: वो
0: काम काम करनी हुई जाए
1: जी,
0: कौन काम करनी हुई जाए कामे तो दुख बा।
1: जन भारती जी काम करेंगे वो काम हम करेंगे। सबके अलग अलग काम बा।
0: अच्छा ठीक है बा।
1: आज के फरमाइश बता दी हो?
0: आज के फरमाइश बजा दी पवन सिंह के कौन गीत।
1: कौन सा, इतना मेहनत से फोन लागल बात तो बता देती तो सही रही।
0: चलिए देखल करी हमारा के कौन जी।
1: ना तो हो जाई प्यारे बलम जी।
0: हाँ ये
1: कार गा के बता सकते नहीं हमके?
0: हाँ कहीं देखल करी हमारा के काम जी ना तो हो जाई प्यारे बलम जी है।
1: बहुत अच्छा गावे नहीं लेकिन।
0: सुनी ना डेडिकेट करते हैं सबसे पहले रोगा के
1: अच्छा जी।
0: भारती दीदी के सोनी दीदी के दिव्या दीदी के आई स्पेशल में करिश्मा जी के। स्पेशल में गणेश भैया के।
1: अच्छा ठीक बात, तो फिर प्ले करते हैं लगभग सबके गाने।
0: पंकज सर के भी सुना दे सोनू सर के भी।
1: जी, सभी को ही सुनी।
0: ठीक बात,
1: तो प्ले करते नहीं गाना?
0: ठीक बात
1: जी, सुनत रही सबके साथ। बाय, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ठीक है।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: और बातें हो सकती हैं अभी मतलब ऑन एयर वाली?
0: जी ये तो ऑन एयर वाली नहीं है, ये तो है।
1: अच्छा नहीं वो अभी जो चल रहा था जैसे ऑन एयर होके फिर बातें करके गाने सुनना है तो?
0: जी बिल्कुल, तो अभी आप रिकॉर्डिंग करा दीजिए और शाम को सुन लीजिएगा।
1: मतलब जो अभी चल रहा है अभी देखिए मैं प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, मैंने मैसेज भी अभी किया है मैसेज वाले नंबर पे।
0: जी जी।
1: लेकिन जैसे अभी बातें हुई और आपने गाने सुनाए तो अभी लाइव नहीं चल रहा है ये?
0: नहीं ये जो मैं शो कर रही हूँ लाइव नहीं चलता है, अभी वो दूसरा चल रहा है, आप उसमें अभी कॉल करके जुड़ सकते हैं और अभी के अभी सॉन्ग सुन सकते हैं।
1: हाँ तो वही तो सोच रहे हैं, वो अलग नंबर है क्या?
0: जी जी उसमें बताया जा रहा है, आप नोट करके कॉल कर सकते हैं।
1: अच्छा आप बता दोगे?
0: मुझे तो नहीं याद है लेकिन उसमें आपको बताया था।
1: अगर बता देते तो, नहीं तो चलिए आपसे रिकॉर्डिंग करवाते हैं। शाम को कितने बजे आप सुनाओगे?
0: 5 बजे, 5 से 7 के बीच।
1: चलिए ठीक है।
0: तो नाम बता दीजिए अपना।
1: जी हाँ मेरा तो भास्कर कुमार तेजस्वी है।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मुंगेर जमालपुर बिहार, वैसे मेरा घर है बट अभी हरियाणा सोनीपत में हूँ।
0: अच्छा जी, वैसे क्या करते हैं आप?
1: एक प्लांट है मारुति सुजुकी की, वहीं पे लगा हूँ।
0: चलिए बढ़िया
1: जी।
0: तो फिर आज की फरमाइश?
1: आज की फरमाइश में एक सॉन्ग सुना दीजिएगा मुझे आतिफ असलम की आवाज में, और गाने के बोल में बता रहा हूँ, गाने के बोल क्योंकि थोड़ा सा भूल चुका हूँ तो 2 मिनट। और पहले तो सुनाना चाहेंगे हम अपने कुछ मित्रों के, जब तक नाम ले लें। बरजू भाई हैं, उत्तम सोनी जी हैं, मुकेश जी हैं, रानी जी हैं, सबनम जी हैं, कामरान भाई हैं, दिलीप राम जी हैं, और सन्यासी रंजन बाबा हैं, श्री राम जी हैं, और भी जितने लाइव श्रोता हमें सुन रहे हैं उन सभी को ये सॉन्ग है कुछ इस तरह। मैं थोड़ा गुनगुना दूं, ज्यादा तो अभी पता नहीं है गाने के बोल। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों को भिगा दे, कुछ इस तरह से है। थोड़ा थोड़ा मुझे मतलब वो सुर नहीं मिल रहा है लेकिन बहुत खूबसूरत गाना है। अगर आपने सुना होगा तो?
0: जी बिल्कुल सुना
1: है। जी
0: तो फिर
1: वैसे आपका नाम क्या हुआ?
0: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: जी मनोरमा जी, आरजे मनोरमा जी, थैंक यू सो मच कि मेरी वॉइस को रिकॉर्ड किया और आप सुनाने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरा गाना सुनाने के लिए आपको ऑलरेडी।
0: जी आपको भी रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
0: वेलकम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हर का गौरव सारण प्रमंडल की शान गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।